0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूहों को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहा 3 दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाला भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग है और हमेशा रहेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने संबंध में अधिसूचना जारी की। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उसमें अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली सरकार आज से 1 महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की भी शुरुआत करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जन सुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 4 वर्ष पहले नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को भारत लाया गया था। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। 52 चीतों में से 49 कोनो राष्ट्रीय उद्यान और 3 गांधी सागर अभयारण्य में है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। कहा, पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी समझौते में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग,

0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। नया रेत से सिलिकॉन से सिस्टम तक मूल्य श्रृंखला अनुभव सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में इस पूरी यात्रा को प्रस्तुत करेगा। सेमीकॉन इंडिया 2026 में 600 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और लगभग 50,000 आगंतुकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। इनमें 52 देशों से प्रतिनिधि, 400 से अधिक अधिकारी और 150 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्षों के उपलक्ष्य पर उनके जन्मस्थान वडनगर में विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ऐतिहासिक शर्मिष्ठा तालाब पर आयोजित महाआरती में भाग लेंगे, जहां से पवित्र जल का कलश वाराणसी जाने वाले बाइकर्स को सौंपा जाएगा। इसके बाद दोनों नेता हाटकेश्वर मंदिर तक पदयात्रा पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पटेल वडनगर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत श्रमदान भी करेंगे। अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बाइक यात्रा के शुभारंभ से पहले काशी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े चार प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जन सुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा।
4: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत आज कर्तव्य पथ पर 1,00,000 से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। जन सेवा से देश सेवा के मार्गदर्शक सिद्धांत से प्रेरित ये कार्यक्रम जन भागीदारी और सेवा की भावना का एक मजबूत संदेश देगा। इस बीच त्यागराज स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक मेगा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुर में GD करना रोड पर खाटू श्याम तिल्ली धाम में 108 कुंडीय यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के लिए एक नमो श्रमिक सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा, जो एक ही छत के नीचे पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और कल्याण योजनाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से इस सोच को जमीन पर उतारने के एक उदाहरण की जानकारी दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजनाओं के माध्यम से भारत में 20,41,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ है और 14,15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।
5: वर्ष 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में बदल दिया है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वही मोबाइल फोन निर्यात में 171 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे भारत एक शुद्ध आयातकर्ता से एक शुद्ध निर्यातकर्ता बन गया है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बताया।
6: साणन और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए साणन का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। साणन में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी।
5: आकाशवाणी से बात करते हुए राजकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष पार्थ गणात्रा ने बताया कि मेक इन इंडिया योजना से राजकोट के MSME क्षेत्र को

0: बड़ा लाभ हुआ है।
1: हाल राजकोट एमएसएमई उद्योग काफी सुवर्ण युग से पसार हो रहा है, उसमें कई वजह से उसको प्रोत्साहन मिला है। खास करके सरकार का जो हाल ही का निर्णय है मेक इन इंडिया, उसकी वजह से रेलवे और डिफेंस में भी राजकोट के काफी स्पेयर पार्ट्स जाने शुरू हो चुके हैं।
0: आज गुजरात मेक इन इंडिया पहल के प्रमुख विकास इंजिनों में से एक बना है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक उज्जवल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। इनमें स्वच्छता वाले चिन्हित स्थानों और सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा, सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि शामिल है। हैदराबाद रियासत ने 17 सितंबर 1948 को आज ही के दिन भारतीय संघ में विलय किया था। इसकी स्मृति में आज हैदराबाद में मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार वर्ष 2022 से आधिकारिक रूप से हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह आयोजित कर रही है। मुख्य कार्यक्रम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए 2023 के बाद पहली बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। दर में 1/4% की बढ़ोतरी के बाद फेडरल रिजर्व की प्रमुख दर लगभग 3.9% हो गई है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का नाम दक्षिण कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है। विधेयक के समर्थन में 262 और विरोध में 159 सांसदों ने मतदान किया। विधेयक को पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में भी आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत पहले 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जया। प्रधानमंत्री की जन्मतिथि पर आज से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान। 1.25 लाख दियों से जगमग होगा कर्तव्य पथ। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ शीर्षक दिया है। राजस्थान पत्रिका ने विशेष कॉलम में लिखा है, मोदी एट 76, संघर्ष से शिखर तक का सफर। दैनिक जागरण के संपादकीय में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा है, मोदी के शासनकाल की सबसे स्थायी उपलब्धि भारतीय समाज की मुख्य धारा का विस्तार है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रतिमाह करने के समाचार को आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने खुशखबरी शीर्षक से लिखा है, कैबिनेट में लिया गया फैसला, पेंशन का दायरा बढ़ेगा। 2013 झीरम घाटी हमला, 10 दोषियों को सजाए मौत, पंजाब केसरी के शब्द है। पत्र लिखता है, हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 29 की मौत हुई थी। तृणमूल के 10 बागी विधायकों को अयोग्यता याचिका पर नोटिस जारी, हिंदुस्तान की खबर है। हिंदुस्तान अपने संपादकीय पन्ने पर भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक समापन पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, ब्रिक्स से भारत को मिले अनेक लाभ। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि सामरिक दृष्टि से भारत का महत्व बढ़ा है। भारत आज न केवल ब्रिक्स बल्कि G20, G7, क्वाड, SCO जैसे तमाम वैश्विक संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जनसत्ता ने देश व्यापार पन्ने पर लिखा है, न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी दी। पत्र लिखता है, इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड भारत के 100% निर्यात पर शुल्क मुफ्त पहुंच देगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। अमेरिका फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhumi in New Delhi this morning. BJP to launch month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan today to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday. India rejects so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, says Islamabad has no locus standi to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. US Federal Reserve raises interest rates for first time in 3 years. US House of Representatives passes package of sanctions targeting Russian officials and key pillars of its economy. And in men's cricket, third and final T20 international between India and Afghanistan to be played in Delhi this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhumi in New Delhi this morning. Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The 3-day conference and exhibition being held from today is being organized on the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policymakers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain. More from our correspondent.
3: The conference will focus on advancing collaboration, investment, innovation and talent development in India. Parallel sessions will cover advancements in the display industry, 6 country roundtables are designed to facilitate collaboration and joint ventures, a forum on women's leadership, among other sessions. Semicon India 2026 will adopt a comprehensive value chain approach, showcasing the journey from semiconductor materials, equipment and chip design to

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है, शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
2: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ 107.1 FM रेनबो पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। और आज आप बहुत बहुत बहुत बहुत जोश में रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही जोशीले गाने आने वाले हैं, खूब मजेदार बातें होने वाली हैं। और अपना ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि आज है बहुत खास दिन। आज का वो दिन है जब हमें स्पेशली जो है अपने बारे में सोचना ही चाहिए। आज के दिन स्पेशली आपको अपनी सेहत के बारे में सोचना चाहिए, और आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम भी आज किसी से आपकी बात करवाने वाले हैं। तो अगर आप भी रखना चाहते हैं अपने दिल का ख्याल, क्योंकि आज है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, तो इसी उपलक्ष में हम बात करने वाले हैं एक कार्डियोलॉजिस्ट से 10 से 11 के बीच में, और वो हमें बताएंगे कि कैसे रखना चाहिए हमें अपने दिल का ख्याल। बात बात पर दिल टूट जाता है, ये अच्छी बात नहीं है, तो जरा दिल का ख्याल रखिए। और वैसे भी आज ही क्यों, हर रोज रखना चाहिए। खैर, इन सब बारे में

बाद में बात करेंगे। और साथ ही साथ आज है अंतर्राष्ट्रीय देसी संगीत दिवस भी, यानी कि कंट्री म्यूजिक, तो फिर इसके बारे में भी हम बात करेंगे और ढेर सारी बातें आपसे करनी है। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत।

हम रातों को उठ उठ के जिनके लिए रोते हैं वो आराम से सोते हैं। जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते, मेरे किसी खत को जला क्यों नहीं देते। शोला ही सही आग लगाने के लिए आ, इन पर्दा नशीनों को भी जलाने के लिए आ। कुछ अपने अपने से लगते हैं ये अल्फाज, किनके हैं ये अल्फाज, कौन है वो शख्स, क्यों हम आज याद कर रहे हैं उन्हें, बताइए बताइए। हाँ मैं जानती हूँ आप सब फटाक से मुझे जवाब दे देंगे। चलिए इस गीत में देखते हैं कौन कौन क्या क्या जवाब देते हैं।

0: दीपा पालकर जी बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ, उन्हीं की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा वक्त है उनका नाम बताने में। बाकी जो लोग हमसे सुबह से जुड़ गए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इलियास पटेल जी हैं हमारे साथ, यशवंत आठमुडे जी हैं, दीपा पालकर जी तो हैं ही, फिरोज सिदनपुरिया जी हैं, विजेंद्र घटोल जी हैं, महेश भाटकर जी हैं, विक्रम आठबले जी हैं, अंजू जी हैं, विश्वास चांदोरकर जी हैं, राकेश माथुर जी हैं, प्रमोद चिंचोलकर जी हैं, प्रणव शिंदे जी हैं, पंकज मोहर जी हैं, प्रमोद खरखनिस जी हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इमाम जी हैं हमारे साथ, दिवाकर शिनोय जी हैं मैंगलोर से, बाबा दादर जी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम एंजॉय करने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, और सुबह सुबह इतने प्यारे प्यारे गुड मॉर्निंग मैसेजेस हमें भेजने के लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। ढेर सारी बातें आपको करनी है आज, जैसा कि मैंने कहा है अंतर्राष्ट्रीय देसी संगीत दिवस, तो ये हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है, और ये जो दिन है वो कंट्री म्यूजिक की समृद्ध परम्परा संगीतकारों और इसे लोकप्रिय संगीत शैली के प्रति रिस्पेक्ट देने के लिए डेडिकेट किया जाता है। कंट्री संगीत के जो मुख्य रूट्स हैं वो अमेरिकी लोक संगीत और ग्रामीण संस्कृति में देखी जाती हैं। इसमें गिटार, बैंजो, फीडल और बहुत सारे ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका उपयोग किया जाता है। प्रेम, परिवार, संघर्ष, प्रकृति, जीवन के अनुभव और भावनाओं से जुड़ी हुई कहानियाँ इन गानों को जो है वो विशेष बनाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय देसी संगीत दिवस संगीत प्रेमियों को जो है कंट्री म्यूजिक के प्रसिद्ध कलाकारों और उनकी जो रचनाएं होती हैं, जो उन्होंने बनाया होता है, लिखा होता है, उनको एंजॉय करने का मौका देता है। और इस दिन लोक संगीत के जो म्यूजिकल जो कार्यक्रम होते हैं उनकी प्लेलिस्ट और विशेष आयोजनों के माध्यम से इसे जो है काफी एंजॉय करते हैं, एक फेस्टिवल की तरह जो है इसे मनाया जाता है। तो आज का दिन संगीत की दृष्टि से तो सही चलिए खास है ही, लेकिन साथ ही साथ ये आपकी सेहत की सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत खास है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार हमारी और आपकी बातें और गीत दोनों बेशुमार।
1: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
2: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
1: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

जरा इस गाने को ना कभी ध्यान से अकेले में सुनिएगा तो आपको समझ आएगा कि जो तेरे संग बोला जा रहा है वो कैसे बोला जा रहा है। तेरे संग नोटिस कीजिएगा, बहुत हल्की हल्की सी इसमें इस तरह के एक्सेंट दिए हुए हैं कुछ कुछ वर्ड्स में। तेरे संग एक सिंपल सी कॉफी भी, जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही कुछ और भी लाइंस है इसमें, मेरे बेचैन सनम, इस तरह से बहुत मजा आता है जब आप गाने की ऐसी छोटी छोटी बारीकियां पकड़ते हैं ना, तो तब आपको लगता है अरे यार मैं ये गाना कब से सुन रहा था और मैंने इस चीज को कभी नोटिस ही नहीं किया।

0: या तो कभी ये जो गाने की बारीकियां है ना पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इनकी वजह से गाने में जो कई बार फ्लेवर आता है ना तो बड़ा ही कमाल का आता है, बड़ा ही मजेदार आता है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार मुंबई, कैसे हैं आप? भाई मुंबई में तो जगह जगह बप्पा की धूम मची हुई है, हर कोई जो है वो पंडालों में जाकर बप्पा के दर्शन करना चाहता है। छोटे बप्पा, बड़े बप्पा, बहुत बड़े बप्पा, बहुत बहुत बड़े बप्पा, बहुत छोटे छोटे से बप्पा, जहां देखो बस बप्पा ही बप्पा नजर आ रहे हैं। आपने किन किन पंडालों के दर्शन किए हैं और आपको सबसे बेस्ट कौन से लगे हैं अब तक, वो भी हमें जरूर बताइएगा। चलिए हम भी आपकी रिकमेंडेशन पर वहां जाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। बताइएगा जरूर कहां कहां आप घूम कर आए हैं और अपनी ये जो लिस्ट है वो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। 107.1 FM रेनबो, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, मैं हूं ममता सहगल आपके साथ लेकर कार्यक्रम मस्त मुंबई। मस्त मुंबई में फिलहाल वक्त एक बहुत छोटू सी टाइनी माइनी से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम करेंगे बातें जो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे है उसके बारे में, क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने अब तक इसके बारे में पता भी कर लिया होगा, लेकिन फिर भी हम कुछ कुछ तो चीज़ें आपको बता ही सकते हैं, क्योंकि आप कितना भी ज्ञान ले लें दुनिया में ना वो हमेशा कम ही रहता है, क्योंकि जहाँ से ज्ञान मिले ना बटोर लेना चाहिए, डेफिनेटली बटोर लेना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार गीत और बातें दोनों ही बेशुमार, बने रहिए हमारे साथ।
1: खास गणेशोत्सवानिमित्त जय गणेश नवीन डिपॉजिट स्कीम।
2: व्याजदर सर्वसाधारण ठेवीदार 7.25%, ज्येष्ठ नागरिक 7.40%, ठेव कालावधी 444 दिवस, मासिक आणि त्रैमासिक व्याजांच्या पर्यायांसह।
1: ही योजना फक्त 25 सप्टेंबर 2026 पर्यंतच, अटी लागू।
2: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव्ह बँक, जीवन करा समृद्ध।

साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

तो जैसा कि मैंने कहा था कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे जो है वो आज मनाया जाता है, तो ये जो दिन है वो स्वास्थ्य सेवाओं के दौरान रोगियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और चिकित्सा संबंधी जो जोखिम होते हैं उन्हें कम करने की जो इम्पोर्टेंस होती है उसके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड होता है। सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा के लिए सही निदान, उचित उपचार, दवाओं का सुरक्षित उपयोग, संक्रमण की रोकथाम और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच प्रभावी संवाद ये बहुत जरूरी होता है, यानी इफेक्टिव डायलॉग जो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, नर्सेस से बात कर सकते हैं, किस तरह से जो है जो फैलने वाले रोग होते हैं उनसे किस तरह से बचा जा सकता है, कैसे आपको दवाइयां सही तरीके से लेनी चाहिए, बिना डॉक्टरी परामर्श के कोई दवा नहीं लेनी चाहिए ये हम हमेशा कहते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना इनके ऊपर जो है काफ़ी ध्यान दिया जाता है और बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार सुरक्षा ही हमारी रोकथाम बन जाती है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस स्वास्थ्य संस्थानों, डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस, पेशेंट्स और उनके परिवारों को पेशेंट सेफ्टी में अपनी भूमिका जो उनका रोल है वो समझने के लिए इंस्पायर करता है। ये जो दिन है वो चिकित्सा में होने वाली गलतियों से सीखने और वो जो हमारे सुरक्षा मानक होते हैं उनको मजबूत करने और जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं उनकी गुणवत्ता को सुधार करने पर जोर देता है। तो ऑल इन ऑल आज का जो दिन है वो इन सब बातों के ऊपर ध्यान देता है कि कैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ को और बेहतर बनाया जाए और सेफ बनाया जाए और कोई भी जो है इनका दुरुपयोग ना कर सके। वैसे ये बातें जो हैं हमें हर रोज़ अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए, कोई एक दिन ये सब चीज़ें करके फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जागरूकता बढ़ाने के लिए हमें डेडिकेटेड डेज की ज़रूरत होती है बिकॉज कहीं ना कहीं से जब शुरुआत होती है तो लोग मिलते जाते हैं, एक भीड़ बन जाती है, एक कारवां बन जाता है, लोग एक साथ आ जाते हैं और फिर जो आता है उसे कहते हैं चेंज, उसे कहते हैं बदलाव, उसे कहते हैं खुशियां, क्योंकि बदलाव से ही खुशियां आती हैं। वैसे अगला गाना आपको सुनवा रही हूँ बहुत खूबसूरत सा है, गीत के उस पार एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार बातें बेसुमा, और हम बात करने वाले हैं उन साहब की जिनकी शायरियों की चंद लाइनें मैंने आपको सुनाई थी। जी हाँ, हसरत जयपुरी साहब।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

कुछ प्रपोजल्स इस तरह से दिए जाते हैं और कुछ प्रपोजल्स खामोश प्रपोजल होते हैं। बस अपने ही दिल में मोहब्बत की जाती है और उस मोहब्बत की दास्तान कागज और कलम के जरिए दुनिया तक पहुंचाई जाती है, लेकिन जिनके लिए वो लिखा जाता है उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया जाता। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो, इस तरह के बोलों से भी अपने प्यार का इजहार हो सकता है। किसी ने सोचा था क्या? कोई सोच सकता था क्या? जी हाँ, सोचा था हसरत जयपुरी साहब ने। जी हाँ, हसरत जयपुरी साहब, जिनका जन्म जयपुर में इकबाल हुसैन के नाम से हुआ था, उन्होंने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को इतने सारे बेहतरीन नजराने दिए हैं। हालांकि आज जो है उनकी पुण्यतिथि है 17 सितंबर 1999 में, वो हम सबको छोड़ कर चले गए थे, लेकिन अपनी कलम का जो जादू वो छोड़ कर गए हैं हमारे लिए, वो सालों साल जनरेशन्स टू जनरेशन्स, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे साथ चलता रहेगा। और ये जो गीत

है ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। ये उन्होंने उस मोहतरमा के लिए लिखा था जिनसे वो बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन अपनी मोहब्बत का जो इजहार है वो उन तक नहीं कर पाए। दिग्गज निर्माता राज कपूर साहब को ये गीत इतना पसंद आया था कि उन्होंने जो है इस गीत को अपनी फिल्म संगम में लिया, जो कि 1964 में आई थी। जी हाँ, डेफिनेटली मैं आपको वो गीत सुनाऊंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मुशायरे में पृथ्वीराज कपूर ने जब इन्हें सुना, इनके कलाम सुने, इनकी गज़लें सुने, तो उन्होंने जो है अपने बेटे राज कपूर से हसरत जयपुरी साहब से मिलने की बात कही, और राज कपूर से मिलने के बाद उन्होंने बरसात फिल्म का गाना जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे बाल माँ, तेरा इंतजार है, ये गाना लिखा। और इस गाने की जो धुन थी वो शंकर जयकिशन साहब ने बनाई थी इस फिल्म में। इस फिल्म से ही बल्कि शंकर जयकिशन साहब का करियर जो है वो शुरू हुआ था। गाना बहुत हिट हुआ और उसके बाद तो हसरत साहब रुके ही नहीं, इतनी खूबी से इतने खूबसूरत गीत लिखे, इतने खूब सारे गीत लिखे कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। गीत, गज़ल, शेर, शायरी, हर वो चीज़ जो आपके दिल पर दस्तक दे जाए, उन्होंने वो सब कुछ लिखा। क्योंकि एक शायर तभी कामयाब होता है जब उनकी लिखी हुई जो शायरियाँ होती हैं, उनके लिखे हुए जो अल्फाज होते हैं, वो हर किसी को अपने से लगें, हर कोई उसको महसूस कर सके, तब जो है एक शायर सही मायनों में सक्सेसफुल कहलाता है। तो आइए सुनते हैं हसरत जयपुरी साहब के लिखे हुए कुछ खूबसूरत से गीत।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

बेहद खूबसूरत से गीत, बेहद खूबसूरत से नजराने जो वो हमें दे कर गए, आज भी लोगों की जुबान पर हैं, लोगों के दिलों पर हैं। और जब भी उनका लिखा हुआ कोई गीत सुनाई देता है तो अमूमन ही हम भी साथ गाने लगते हैं। यही तो जलवा होता है गीतों का, यही तो जलवा होता है लिरिक्स का जो हमारे दिल में बस जाते हैं। 107.1 FM रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, मैं हूं ममता सहगल आपके साथ लेकर कार्यक्रम मस्त मुंबई, जो बस अब से कुछ ही देर में हो जाएगा खत्म क्योंकि उसके उस पार है कार्यक्रम नमस्ते भारत। नमस्ते भारत में आज क्योंकि हमें आपके दिल का ख्याल है, हम बात करने वाले हैं एक कार्डियोलॉजिस्ट से और जानेंगे कि कैसे रख सकते हैं हम अपने दिल का ख्याल। लेकिन उसके पहले ठीक 10 बजे होंगे समाचार हमारे मुंबई केंद्र से, और समाचारों के उस पार मेरी और आपकी एक बार फिर से मुलाकात।

0: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: नमस्कार, 107.1 FM Rainbow आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से. सुबह के ठीक 10 बज चुके हैं. आइए नजर डालते हैं इस वक्त की समाचारों की सुर्खियों पर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे. आज से शुरू हो रहे 3 दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम. स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हुआ है. इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत विकसित भारत. समाचारों में आगे है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा 24 सितंबर को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में गणेशोत्सव के अवसर पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम का उद्देश्य महाराष्ट्र और केरल की कला एवं सांस्कृतिक परंपराओं के बीच आपसी सराहना और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है. समाचारों के अंत में खेल जगत से समाचार. भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा. भारत पहले 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है. इसी के साथ समाचार समाप्त हुए. बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो की मुंबई प्रसारण सेवा के साथ.

भाई दिल तो डेफिनेटली आ जाता है, बहुत बार आ जाता है, और जब दिल आ जाता है उसके बाद जब दिल टूट जाता है तो भाई बड़ा ही जोर का झटका जोर से लगता है। एक काम कीजिए, अपने दिल का थोड़ा सा ख्याल रखिए। और आप अपने दिल का ज़्यादा ख्याल कैसे रख सकते हैं, इसके लिए हम जो है एक डॉक्टर से बात करने वाले हैं, और उन डॉक्टर से हम जानेंगे कि किस तरह हम अपने दिल का बेहतर ख्याल रख सकते हैं। आपको बता दें कि हम बात करने वाले हैं डॉक्टर तनय पदगांवकर जी से, जो एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और पिछले 15 सालों से जो है आमची मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये जो है स्पेशलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी और स्टेंट इम्प्लांटेशन में, जो हार्ट डिजीज से जो लोग जूझ रहे हैं उनके लिए। तो बस अब से कुछ ही देर में हम बात करने वाले हैं इनसे, बने रहिए हमारे साथ।

0: भाई जब तक आप प्यार के दीवाने हैं सब चलता है, लेकिन अगर ये दीवानगी पागलपन की हद तक बढ़ जाए और आपके दिल को नुकसान पहुंचाने लगे तो इससे बचकर रहना चाहिए। और कैसे हम अपने दिल को नुकसान पहुंचाने से बच सकते हैं, इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर तने। तने सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में।
1: थैंक यू
0: जी। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज सबसे पहले तो आपको भी वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग जो रोज इतनी मेहनत करते हैं सभी पेशेंट्स को ठीक करने के लिए और अपनी जी जान लगा देते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, तो सबसे पहले तो हम सभी की तरफ से आपको उस चीज के लिए दिल से थैंक यू।
1: यस सर, यस, हमारा फर्ज ही बनता है, ये सब पब्लिक सर्विस ही है हमारे लिए, जाने बचाना हमारा काम ही है
0: जी। तने सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर हम लोग अपने दिल को बड़े हल्के में ले लेते हैं, लेकिन दिल बड़ी भारी चीज होती है, तो हम इस दिल का ख्याल कैसे रख सकते हैं?
1: देखिए, ये उतनी मुश्किल चीज नहीं है। ये ख्याल रखना एक्चुअली बेसिक लाइफस्टाइल वाली चीजें है, जो आजकल आई थिंक नया जनरेशन काफी अच्छे से समझ चुका है। इसके लिए नॉर्मल लाइफस्टाइल, अच्छे से लाइफस्टाइल मेंटेन करना, मतलब गंदी चीजें, बाहर की ऑयली चीजें, फ्राइड चीजें ना खाना, एक अच्छा बैलेंस डाइट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज करना, रेगुलर कार्डियो एक्सरसाइज प्लस थोड़ा वेट ट्रेनिंग भी करना उतना ही जरूरी है। स्ट्रेस फैक्टर्स जैसे ओवरऑल लाइफ का स्ट्रेस, ये सब जो स्ट्रेस रहता है उसको मेंटेन करना, उसको कम रखना बहुत जरूरी है। साथ ही में जो बाकी आपके मेडिकल, अगर आपको कोई डिसीजेस है जैसे डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, आपको ब्लड प्रेशर हो, तो उनको एकदम स्ट्रिक्टली अच्छे से रेगुलर फॉलोअप आपके फैमिली फिजिशियन के साथ हो या कोई भी डॉक्टर के साथ अच्छे से फॉलोअप करके उसको रेगुलरली चेक करे और उसको अच्छे से कंट्रोल करे, तो वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें हैं जो अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ती है और फिर 5 साल बाद 10 साल बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है हार्ट के लिए।
0: तनिष जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल देखा गया है कि बहुत यंग एज में भी लोगों को हार्ट अटैक जैसी बीमारियां जो है वो हो रही है, जो एक समय पर माना जाता था कि 60-70 के बाद ही होती हैं, लेकिन आजकल 18 साल 12 साल 20 साल 25 साल इस उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक की जो है प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ?
1: तो ये एक्चुअली इस जमाने में और रादर पिछले 15-20 साल में 30 साल में काफी ज्यादा बढ़ गया है, और इसका कारण भी यही है, खराब लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। जैसे आप देखें तो एक ही जगह पर बैठ के दिन भर काम कर रहे हैं, भले जिम जाते हैं पर 12-12 घंटे एक ही जगह पर बैठ के काम कर रहे हैं। ओवरऑल जो स्ट्रेस है वो आप देखेंगे तो हमारे मदर फादर या हमारे पिताजी के टाइम पे जो स्ट्रेस था उसके कंपेरिजन में आज के लाइफस्टाइल में काफी ज्यादा स्ट्रेस फैक्टर बढ़ गया है। दूसरा चीज के वैसे देखा जाए तो जो हमारा इंडियन पॉपुलेशन है उनमें वैसे भी लाइफ मतलब जो हार्ट की बीमारियां है या ब्लॉकेज की जो बीमारियां है उसका ओवरऑल जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा ज्यादा ही प्रीडिस्पोजिशन है, मतलब ज्यादा चांसेस है उसमें। ये सब जो चीजें हैं जैसे स्ट्रेस एंड अर्ली ऑनसेट डायबिटीज, मतलब जल्दी डायबिटीज हो जाना, जल्दी से कोलेस्ट्रॉल बीमारी आना, जल्दी कम उम्र में हाइपरटेंशन या बीपी की बीमारी आना, उसके भी चांसेस ज्यादा हो गए। तो ये सब फैक्टर्स सडनली मिलते हैं, ओवरऑल अवेयरनेस इसका कम है तो लोग चेकअप्स नहीं कराते हैं, लोग उसके लिए उसको ट्रीटमेंट इग्नोर करते हैं, बोलते कि नहीं हमको एसिडिटी हो रही है, इग्नोर करते हैं और फिर इसके मतलब चांसेस और रिस्क बढ़ जाता है और फिर इवेंचुअली बीसी के कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं।
0: तने जी, हम एक बात और जानना चाहते हैं कि आजकल जो है सोशल मीडिया जो है बहुत ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है और हर जगह कहीं ना कहीं कोई ज्ञान देने लगता है कि ये सिम्टम्स हो तो आपको हार्ट अटैक आने वाला होता है, 6 महीने पहले बॉडी ये सिम्टम देती है, ऐसा कुछ होता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप एक डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल हैं और इस तरह के पेशेंट्स को देखते आ रहे हैं, क्या हमारी बॉडी हमें 6 महीने 8 महीने पहले ऐसे कुछ साइंस देने

0: लगती है जिससे हमें पता चलता है कि अभी हमें हार्ट अटैक आ सकता है?
1: देखिए, एक एक चीज हार्ट के बीमारी, मतलब जो हार्ट अटैक का जो बीमारी है उसका एक चीज अच्छा है कि उसके जो सिम्टम्स है वो बहुत टिपिकल होते हैं। कोई भी वेक सिम्टम्स हो तो उसको हम नहीं कह सकते कि वो हार्ट अटैक का अर्ली सिम्टम है। जो जैसे आपको, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप चलते हैं तो आपको सीने में भारीपन लगना या आपको आपका सांस फूलना, ये एक बहुत टिपिकल हार्ट का सिम्टम है। और हाँ, ये कई बार 6 महीना, लोग इनफैक्ट उसके ऊपर एक एक साल के लिए बैठ जाते हैं, एक एक साल के लिए इग्नोर करते हैं, खुद की एक्टिविटीज कम करते हैं और इसको इग्नोर करते हैं। तो ये सब सिम्टम्स है, अगर आपको हो रहे तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। पर हाँ, अगर आप बोलो कि नहीं मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे पीठ दर्द हो रहा है और वो मेरा वो अर्ली सिम्टम था हार्ट अटैक का, तो वो तो नहीं हो सकता। बट ये जो टिपिकल हार्ट के सिम्टम्स है वो कई बार 6-6 महीना पहले भी होते हैं और उनके लिए टाइमली चेकअप करवाना बहुत जरूरी है।
0: जी सर, टाइम हो रहा है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर हम आपसे फिर से बात करेंगे और हम जानना चाहेंगे कि एंजियोप्लास्टिक और एंजियोग्राफी कब और किन सिचुएशंस में की जाती है इसके बारे में। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के उस पर हम फिर से बात करेंगे डॉक्टर साहब से। जी तो ब्रेक के उस पर हम बात करेंगे एक बार फिर से डॉक्टर साहब से और जानना चाहेंगे कि ये जो दोनों चीज़ें होती हैं वो क्यों, कब और कैसे करवानी चाहिए और कब इनकी एक्चुअल में ज़रूरत पड़ जाती है। फिलहाल ये छोटा सा ब्रेक।
2: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
3: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
2: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है, शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
4: Check out this funky sound.

0: भाई फ्राइडे नाइट को खूबसूरत करने के चक्कर में अपने दिल के साथ कुछ ऐसा मत कर बैठिएगा कि आपका जो दिल है ना वो धक धक करने की जगह भक भक करने लगे। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर तनय पदगांवकर, जो एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और पिछले 15 सालों से जो है लोगों की सेवा में कार्यरत हैं और लोगों के दिलों का ख्याल रख रहे हैं। तनय जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू
0: जी। तनी जी, इस गीत से पहले और ब्रेक से पहले हमने बात की थी एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी के बारे में, तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिनमें ये चीज़ें करवानी पड़ती हैं और क्यों करवानी पड़ती हैं और ये कितनी सेफ हैं करवाने के लिए?
1: देखिए, एंजियोग्राफी तो काफ़ी सेफ है, मतलब उसमें रिस्क देखा जाए तो 1% से भी कम रिस्क रहता है। एंजियोग्राफी ये आखिर में एक सिर्फ टेस्ट है जिसमें हमें ब्लॉकेज के बारे में पता चलता है, वो कोई ट्रीटमेंट का फॉर्म नहीं है, सिर्फ टेस्टिंग है। और एंजियोप्लास्टी उसी का ट्रीटमेंट फॉर्म होता है, मतलब जिसमें हम स्टेंट डालते हैं और ब्लॉकेज को ओपन करते हैं, उसका भी रिस्क प्रोफाइल काफी कम ही होता है, मतलब लेस देन यूजुअली 1% रिस्क एंजियोप्लास्टी में भी होता है। ये कभी करते हैं, मतलब अगर आपको टिपिकल सिम्टम्स है, आपको टिपिकल हार्ट ब्लॉकेज वाले से, जैसे मैंने पहले बताया आपको सीने में दर्द हो रहा है, आपको सांस फूल रही है, या आपको आपने और कोई टेस्ट कराए हैं जिसमें आपको ब्लॉकेज का इंडिकेशन मिला है, जैसे आपका स्ट्रेस टेस्ट हुआ हो वो पॉजिटिव आया हो, या आपने सीटी एंजियोग्राफी कराया हो उसमें आपको कोई ब्लॉकेज दिखाई दिए हो, या फिर आपके डॉक्टर ने आपको टिपिकल अंजाइना के लिए डायग्नोस किया हो, तो वो सब सिचुएशंस है जहां पे हम लोग नॉर्मली एंजियोग्राफी करते हैं। या फिर आपको अगर इमीडिएट हार्ट अटैक आया हो तो उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है कि ऑन द स्पॉट उसका एंजियोप्लास्टी करके ब्लॉकेज खोलना, तो वो अल्टीमेट उसका ट्रीटमेंट होता है स्टेंट डाल के ब्लॉकेज को खोल देना।
0: सर, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिनका नाम सुनते ही जो लोग हैं वो डर जाते हैं और इस वजह से वो कई बार हॉस्पिटल जाना अवॉइड करते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, तो आप एज अ डॉक्टर उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? जैसे कई बार लोग सांस फूलने को बहुत नॉर्मल समझते हैं, अरे ठीक है भाग गया, थोड़ी उम्र हो रही है, सांस फूल गई। एसिडिटी को अक्सर देखा गया है कि लोग जिस एसिडिटी को सिर्फ एसिडिटी मानकर चलते हैं वो एसिडिटी नहीं होती, कई बार वो हार्ट अटैक का कारण भी बन जाती है, तो इन सब सिचुएशंस में लोगों को सबसे पहले अगर घर पे ही ट्रीटमेंट देना है जिनको पता लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो क्या कर सकते हैं और किस कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जब उन्हें बिना डिले किए हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए?
1: तो देखिए, ये जैसे हार्ट अटैक वाला जो चीज है तो उसके लिए घर पे हम लोग कई बार डिस्पिरिन की गोली या सॉर्बिट्रेट की गोली दिलवाते हैं ताकि थोड़ा सिम्टम्स रिलीफ हो, थोड़ा उसका जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा कम हो। पर आखिर में अगर आपको प्रॉपर हार्ट अटैक आ रहा है तो उसको घर पे तो ट्रीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो जाता है, तो उसके लिए मेरा हमेशा पेशेंस।
0: हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
1: तो आपको जल्द से जल्द बेहतरीन ट्रीटमेंट, बेस्ट ट्रीटमेंट जो भी है वो मिल पाए। अभी पेशेंट डरते हैं ये सब चीजों से, वो हमें भी मालूम है और इसीलिए हम लोग इनको अवेयरनेस प्रोवाइड करने की कोशिश है। सोशल मीडिया के थ्रू भी कई बार कई डॉक्टर्स हैं जो इसके लिए अवेयरनेस करते हैं कि भाई किस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, किस प्रकार से उसको इवेल्युएट करना चाहिए। मेरा एक मेन रिकमेंडेशन लोगों को यही रहता है कि भले आपको जो भी तकलीफ हो रही है, एटलीस्ट थोड़ा सा चेकअप टाइम टू टाइम करवाते रहिए। भले बेसिक जो हार्ट के टेस्ट रहते हैं जैसे ECG हो या स्ट्रेस टेस्ट हो, वो हर एक दो साल में एक बार करते रहना चाहिए ताकि हम तकलीफ में पहुंचने के पहले ही उसे पकड़ ले और उसे ठीक कर ले। मतलब हार्ट अटैक आने से पहले अगर उसको पकड़ के उसको ठीक कर सकते हैं तो फिर हार्ट अटैक तक जाने की जरूरत ही ना पड़े।
0: जी, हमारे एक लिसनर है संदीप काले महाराष्ट्र नांदेड़ से, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं कि यदि किसी के दिल में छेद है और इसका पता चलता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या ट्रीटमेंट होते हैं?
1: तो देखिए, ये छेद वाला जो बीमारी है वो तो मतलब उसका हार्ट अटैक से कुछ संबंध नहीं है, वो कम्प्लीटली अलग बीमारी है। छेद है वो तो कंजेनेटिव बीमारी, मतलब बचपन से या जन्म से जो बीमारी होती

0: ये उसके कैटेगरी में गिना जाता है। उसका अगर छेद बड़ा है या अगर कोई मतलब स्पेसिफिक जगहों पर है तो उसका ट्रीटमेंट एक ही होता है, उसको बंद करना रहता है। कई बार ये बचपन में ही बीमारी पकड़ी जाती है और उसको बचपन में ही बंद किया जाता है, और रेयरली मिस होता है तो उसको जैसे बड़े होने के बाद उसको बंद करना पड़ता है। बट एक तो डिवाइस बिठा के, बटन जैसा एक छोटा डिवाइस आता है जो एंजियोप्लास्टी के जैसे प्रोसीजर के द्वारा हम बिठाते हैं, तो वो करके उसको बंद कर सकते हैं, और अगर वो पॉसिबल नहीं होता है तो रेगुलर सर्जरी के द्वारा उस छेद को बंद कर सकते हैं।
1: चलते चलते डॉक्टर साहब आपसे बस कुछ अनमोल वचन सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि एक फटाफट से क्विक टिप्स वापस से दे दीजिए, क्योंकि कुछ लिसनर्स हमारे साथ अभी जुड़े होंगे, कि अपने दिल को हेल्दी रखने के लिए हमें किस चीज को रखना चाहिए अपने साथ, किस चीज को नहीं, कुछ डूज एंड डोंट्स टू कीप आवर हार्ट हेल्दी।
0: डेफिनेटली, तो डूज एंड डोंट्स में बहुत ही सिंपल रखता हूँ। एक है जो आपकी मेन लाइफस्टाइल है उसको अच्छे से मेंटेन रखिए, अच्छा बैलेंस डाइट रखिए, ऑयली फूड्स, फ्राइड फूड्स ये सब अवॉइड कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए, स्मोकिंग, टोबैको कोई भी फॉर्म में बंद ही करना है, अवॉइड करना है। और आपको अगर कोई भी दूसरी बीमारियां है जैसे डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो या बीपी हो, तो उसकी दवाई चालू रखिए, उसको अब्रप्टली बंद मत कीजिए सोच के कि हाँ अभी कंट्रोल में आ गया है, क्योंकि ये सब बीमारियां हैं जो लॉन्ग टर्म चलती है। और अगर हो बीमारियां है तो उनको टाइमली चेकअप करके, उनको रेगुलर बेसिस पे या ईयरली चेकअप करके, उनको पहले से ढूंढ के उनको रेगुलर ट्रीटमेंट में रखना है ताकि वो आगे चल के परेशानी ना करे।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप काफी बिजी थे और उसके बावजूद आपने हमें आज समय दिया। आई एम श्योर आपके पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, तो अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर तनय पदगांवकर, जो एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और पिछले 15 सालों से मुंबई की सेवा कर रहे हैं, पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं, उनके दिलों का ख्याल रखे हुए हैं। और आप अपने दिलों का ख्याल कैसे रखते हैं भाई, बताइए जरा। अपने दिल को मैंने कहा ना, बहुत संभाल के रखने की जरूरत है, यूं ही बस ऐसे ही बांटते मत फिरिए अपने दिल को।

बिल्कुल, आप किसी को बेपनाह बे इंतहा मोहब्बत कीजिए, लेकिन वो मोहब्बत आप पर इस कदर हावी ना हो जाए कि आप ना तो अपने दिल का ख्याल रखें और ना ही अपने अपनों का ख्याल रखें। क्योंकि अक्सर मोहब्बत में कई बार देखा गया है कि इंसान बागी हो जाता है, उसे हर चीज़ जो है जो उसकी मोहब्बत के अगेंस्ट जाती है वो बुरी लगती है। ऐसा मत कीजिए। अगर कोई आपको कुछ रोक टोक कर रहा है तो ज़रा सुनने, सोचने और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो जिस स्टेज से अभी आप गुजर रहे हैं बहुत पहले गुजर चुके हैं, बहुत कुछ देखा है उन्होंने, उनकी नज़रों ने, उनकी निगाहों ने। तो किसी की मोहब्बत किसी के लिए जो है तकलीफ की वजह ना बन जाए, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि अक्सर मुस्कानें झूठी होती हैं।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है, शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
2: और आपके दिल का ख्याल रखते हुए अब चाहूंगी आपसे इजाजत। मेरी और आपकी अगली मुलाकात तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी एक गीत है इसे गुनगुनाते रहिए और FM रेनबो के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि उर्वशी आएंगी अब बस कुछ ही देर में 11 बजे समाचार लेके, और समाचारों के उस पार ब्रेक फ्री के साथ आपका ढेर सारा मनोरंजन करने। गानों की लिस्ट उनकी मैं देख रही हूँ, बड़ी ही खूबसूरत सी है और जो जानकारियां वो आपके लिए लेकर आई हैं, हाय हाय मजा ही आ जाएगा। तो अगर आप कहीं गए तो नुकसान आपका होगा, इसलिए कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। मेरी और आपकी अगली मुलाकात तक के लिए खुश रहिए, गुनगुनाते रहिए, जिंदगी एक गीत है इसे गुनगुनाते रहिए।

नमस्कार, अब आप सुनेंगे हिंदी में हेडलाइंस। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने आज एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मुंबई में और चिराग पासवान ठाणे में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। चीता संरक्षण कार्यक्रम, भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हो चुका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मुंबई और उपनगरों में आज अगले 3-4 घंटों में हल्की बारिश होने की संभावना है। विभाग ने यह भी कहा है कि इस दौरान पालघर, रायगढ़ और ठाणे में भी हल्की बारिश हो सकती है।

0: गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
2: नमस्कार, मैं उर्वशी फिर से एक बार एफएम रेनबो पर आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। समय है ब्रेक फ्री का। बहुत ही खूबसूरत गाने, जिंदगी की पॉजिटिव सी बातें और ये जो उलझने हम लिए घूमते हैं उस पे से थोड़ा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया है। आई एम श्योर आप सब लोग अपने अपने ऑफिस पे या फिर काम पे पहुंच गए होंगे और शायद काम करते करते बीच बीच में थोड़ा सा रेडियो भी सुन लेते होंगे। गाने हमेशा हेल्प करते हैं ना कि थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा कर ले। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको ब्रेक देती है और इसीलिए मैं बहुत सारे गाने, बहुत खूबसूरत सी बातें लेके फिर से एक बार आपके साथ हूँ इन द शो ब्रेक फ्री। मिलते हैं कुछ खूबसूरत गानों के बाद।

ब्रेक फ्री सुन रहे हैं आप मेरे यानी उर्वशी के साथ। और ऐसी कुछ बातें होती है ना जो आपके दिमाग में जैसे लूप होना वैसे रिपीटेशंस पे चलती रहती है। प्रमोशन है, पैसे है, कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे करने हैं, ये सारी बातें हमारे दिमाग में जैसे एक लूप हो जाता है ना वैसे घूमती रहती है और उनसे ब्रेक लेना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं अभी रिसेंटली कुछ पढ़ रही थी, उसमें मैंने एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ पढ़ी कि जो लूप अगर आप ब्रेक करना चाहते हो तो ज़रूरी है कि आप जगह चेंज कर लीजिए। अगर जैसे कि आप अपनी ऑफिस की चेयर पे बैठे हैं और वहाँ आपको बहुत थॉट्स आ रहे हैं तो आप उठ के कहीं और चले जाइए, आपका ये जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा और आपको इन थॉट्स से ब्रेक भी मिल जाएगा। तो ऐसी ही कुछ बातें ब्रेक फ्री में मैं उर्वशी आपके लिए लेके आई हूँ। सुनते रहिए कुछ खूबसूरत गाने, इन उसके बाद फिर से कुछ बातें होगी।

0: गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। समय है ब्रेक फ्री का। बहुत ही खूबसूरत गाने और खूबसूरत सी बातों के साथ मैं उर्वशी आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। अभी कुछ देर पहले ही हम बात कर रहे थे कि कभी कभी ना कुछ बातों का जैसे लूप बन जाता है और आप उसमें से ब्रेक नहीं कर पाते अपने आप को। तो मैंने एक बात जो आपको बताई कि आप जगह बदल लीजिए, उससे बहुत ही फ़र्क पड़ता है। मैं वो आर्टिकल जब पढ़ रही थी उसमें एक बहुत खूबसूरत बात ये भी थी कि अगर आप कुछ ब्रेक करना चाहते हो ना तो उल्टी गिनती करना भी, मतलब साउंड थोड़ा फनी करता है लेकिन वो भी बहुत हेल्प करता है। तो कुछ कुछ ऐसे नुस्खे होते हैं जो अलग अलग लोगों पे अलग अलग काम करते हैं। मैं कुछ कुछ चीजें इनमें से ट्राई कर रही हूं और मुझे सच में मजा आ रहा है, तो आप भी करके देखिए। अभी सुनिए ब्रेक फ्री में बहुत ही खूबसूरत गाने मेरे यानी उर्वशी के साथ।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

एफएम रेनबो पर है आप मेरे यानी उर्वशी के साथ और शो सुन रहे थे हम ब्रेक फ्री। अब थोड़ी ही देर में ब्रेक फ्री खत्म हो जाएगा लेकिन उसके बाद म्यूजिक कैफे का समय होगा और आप जानते ही हैं ना कि एक बजे के बाद तो हम हिट एंड हॉट में आपकी फरमाइश भी लेने वाले हैं। तो जो जो लिसनर्स के गाने फिक्स हैं कि मुझे ये गाना सुनना है, मुझे वो गाना सुनना है, उनको तो मैं बोलती हूँ कि अभी से अपनी फरमाइश के गाने मुझे भेजना शुरू कर दीजिए ताकि जिन जिनको कंप्लेन होती है ना कि भाई हमारे गाने नहीं बजते, वो मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के दिन में अभी ब्रेक फ्री खत्म करेंगे थोड़ी ही देर में, उससे पहले ये खूबसूरत से गाने सुनिए और अपनी फरमाइश के गाने भी मुझे भेज दीजिए।

हिंदी हेडलाइंस में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक तरफ सदियों की निर्माण परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की तकनीक और दृष्टिकोण ही विकसित भारत की प्रेरणा है। वे नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश के अगले कई दशकों के विकास के लिए सेमीकंडक्टर क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है और सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण में सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास के लिए 6 स्तंभों के आधार पर काम किया जाएगा। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के

भूख हड़ताल खत्म करने के फैसले का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी 13 में से 12 मांगे पहले ही मान ली है और वह उन सभी को पूरा करेगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और ATF के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में कटौती की है। डीजल के निर्यात पर सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर समेत विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दर अब 25 रुपये से घटाकर 20 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। वहीं विमान ईंधन के निर्यात पर ESD 19 रुपये से घटाकर 15 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। इसी तरफ पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क घटाकर 0.5 रुपये से प्रति लीटर कर दिया गया है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए 2023 के बाद पहली बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। दर में 1/4% की बढ़ोतरी के बाद फेडरल रिजर्व की प्रमुख दर लगभग 3.9% हो गई है। फेडरल रिजर्व के तिमाही रिपोर्ट के अनुसार इस साल एक और बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे दर 4.1% तक पहुँच सकता है।

एफएम रेनबो पर समय है म्यूजिक कैफे का। म्यूजिक कैफे में मुझे ना अच्छा लगता है कि आपके लिए बहुत ही खूबसूरत से गाने ढूंढ के लाऊं, ऐसे गाने जो शायद बहुत समय से मैंने भी नहीं सुने हैं, आपने भी नहीं सुने हैं। तो बस इस म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत तो हमने इस बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ कर दी। अभी एक और गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ इस म्यूजिकल जर्नी में। और हाँ, हिट एंड हॉट के लिए अपने रिक्वेस्ट मुझे अभी से भेजना शुरू कर दीजिएगा, ताकि आपको कंप्लेन ना हो कि आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपकी जो फरमाइश के गाने हैं, वो उर्वशी अब बजाते नहीं हैं, है ना। तो चलिए ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुनते हैं एफएम रेनबो पर।

नमस्कार, एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप। और थोड़ी ही देर में 12:30 पर आप एक खास प्रस्तुति सुनेंगे, उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका। तो आइए हमेशा की तरह आज एक बार फिर से सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं, पेड़ हमें जीवित रहने के लिए जरूरी कई लाभ प्रदान करते हैं जिनमें स्वच्छ हवा, साफ पानी, छाया और भोजन शामिल हैं। वे हमें आशा और अंतर्दृष्टि भी देते हैं और दृढ़ रहने का साहस भी। पेड़ हमें ऊंचाइयों पर उड़ते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना सिखाते हैं। बहुत ही अर्थपूर्ण संदेश भेजा है आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों हम पेड़ों पर ही चर्चा कर रहे हैं, ऐसे समय में आपका ये संदेश बहुत प्रासंगिक है। और हमें अगला संदेश मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ भुज से जगदीशोरी पूजा और पायल जी का, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से वारिस अली खान, इस्लामुन निशा, शकील अहमद।

अहमद, शहनाज खान और दानिश लिखते हैं, नदी का सफर हमने सुना, कहानी रोचक, ज्ञानवर्धक और लाभप्रद लगी। शिकायत, मैं काफी दिनों से मेल कर रहा हूँ लेकिन आज तक मेरा कोई भी मेल नहीं पढ़ा गया है, क्या आपको मेरा मेल नहीं मिलता है? जी, इसके लिए हम कहना चाहेंगे, देखिए जैसे ही आपका मेल हमें मिला हमने तुरंत शामिल कर लिया है। कई बार विलम्ब जरूर हो जाता है क्योंकि हमें सभी श्रोताओं के संदेशों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मेल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव खिंदासर, तहसील खोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी, मेन रोड तेलहारा महाराष्ट्र से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, सुनील पोहरकर, साहिल पोहरकर और कुमारी सुजाता पोहरकर, आप सभी श्रोताओं को हार्दिक धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं हम इस सप्ताह पर्यावरण से जुड़ी दुनिया की अनेक लोक कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। इन लोक कथाओं को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण से जुड़े मनोरंजक लेकिन उपयोगी संदेशों को आपके सामने लाना। प्रिय श्रोताओं, आज हम रूस में प्रचलित एक अनोखी मान्यता के बारे में बात करेंगे। रूस के जंगलों में रहने वाले प्राचीन काल के लोगों की एक मान्यता थी, उनके जंगल का कोई रहस्यमय रखवाला है और उस रखवाले का नाम है लेशी। मैं आपके लिए दोहरा दूं, उसका नाम है लेशी। लोग कहते हैं लेशी न देवी है न देवता है, लेकिन वो एक रहस्यमय पात्र है और जंगल का असली मालिक वही है। लेशी लोगों की कल्पना द्वारा गढ़ा हुआ पात्र है। श्रोताओं, लेशी को पात्र मानकर रूस में बच्चों को बहुत सारे पर्यावरण की रक्षा से संबंधित मजेदार संदेश दिए गए हैं, लेकिन कैसे संदेश, आइए जानते हैं। वहां के जंगलों में पुराने लोग और माता पिता अपने बच्चों को लेशी की कहानियां सुनाते हैं और कहते हैं, जंगलों को यदि तुम स्वार्थ के लिए नुकसान पहुंचाओगे तो लेशी तुम्हें सजा देगा। यदि तुम जंगल में कहीं आग जलाकर छोड़ दोगे तो सावधान, कोई देखे या नहीं देखे लेशी तुम्हें देख लेगा। अगर तुम पशु पक्षियों को सताओगे, उन्हें तंग करोगे तो लेशी तुम्हें भी तंग करेगा। माता पिता बताते हैं, लेशी बुरा नहीं है, वो सबको प्यार करता है, लेकिन जंगल प्रकृति और पर्यावरण का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता। और हाँ, जंगल के किनारे रहने वाले गांवों में यदि बच्चे ऊंची आवाज में बात करें तो माता पिता या दादा दादी कहते थे, ऊंची आवाज में मत चिल्लाओ, रात को पेड़ सोते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, और जब उन्हें तकलीफ होती है तो लेशी को भी बुरा लगता है। रात को घरों में बच्चे पूछते हैं, लेशी कैसा दिखता है? तो लोग अपनी अपनी कल्पना से पुरानी किंवदंतियों के अनुसार बताते हैं, लेशी कभी कभी पेड़ जैसा विशाल दिखता है तो कभी घास जितना छोटा, जब पेड़ से बात करता है तो पेड़ की तरह विशाल हो जाता है, जब किसी घास को मित्र बनाता है तो घास की तरह छोटा हो जाता है, कुल मिलाकर वो बहुरूपिया है, इत्यादि इत्यादि। तो आइए चलते हैं, आज हम आपको लेकर चलेंगे रूस के घने जंगलों में, ऐसे जंगल जहां पेड़ इतने विशाल हैं कि दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। कल्पना करें कि एक जंगल में कुछ लोग गए, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां हैं, पेड़ों को काटने के लिए आरियां हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लाभ कमाना है। तो सवाल है, ऐसे में लेशी क्या करेगा? वो तो जंगल का रखवाला है, कैसे जंगल को बचाएगा? आइए सुनते हैं उस मान्यता के अनुसार लेशी क्या करेगा। वो उन लोगों को जंगल में भटका देगा और उस जगह पर पहुंचने ही नहीं देगा जहां जाकर वे पेड़ों को काटना चाहते हैं। वो प्रकार प्रकार का रूप धारण करेगा और उन लोगों को कई ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएगा जिनसे उन पेड़ों तक पहुंचा ही ना जा सके। लेशी उन्हें तब तक छकाता रहेगा जब तक वे परेशान होकर पश्चाताप न कर लें, और जब वे समझ जाएं कि उन्होंने गलत किया है, लेशी उनका प्यारा दोस्त बन जाएगा और जंगल से बाहर निकलने और सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने में मदद करेगा, या उस रास्ते से ले जाएगा जहां काटने के लिए सूखे पेड़ हों। तो श्रोताओं, एक प्रश्न और सुनिए, यदि कोई बस मनोरंजन के लिए शिकार करने जाएगा तो लेशी क्या करेगा? तो यहां भी लेशी शिकारी को खूब परेशान करेगा, वो कई पशुओं का रूप धारण करेगा ताकि शिकारी उसका पीछा करें और असली पशु बच जाएं। तो साथियों, ये थी रूस की प्राचीन किंवदंती, है तो काल्पनिक लेकिन कोई संदेह नहीं है कि ये बड़ी मजेदार और पर्यावरण संरक्षण का ठोस संदेश देती है। कितनी सुंदर बात है, आज विज्ञान हमें बताता है कि जंगल पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने, जल चक्र को बनाए रखने और असंख्य जीवों को आश्रय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन सदियों पहले लोग, जब शायद विज्ञान की इन शब्दावलियों को भी नहीं जानते थे, उन्होंने अपनी भाषा में कहा, किंवदंतियों में कहा, लोक कथाओं में कहा, जंगल का भी एक रक्षक है। तो आइए अंत में सुनते हैं कि प्यारा और सबका मित्र लेशी उमंग कार्यक्रम में क्या कहना चाहता है। लेशी कह रहा है हम सबको कि जंगल में प्रवेश करो तो उसके मालिक बनकर नहीं, अच्छे अतिथि बनकर जाओ, जंगल तुम्हारी बड़े प्यार से पूरी आवभगत करेगा।
तो श्रोताओं,

कैसी लगी आपको लेशी की कहानी जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का मजेदार प्रश्न। यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सॉनेट शैली में लिखे गए हैं। सॉनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल भंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे काहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर, हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध

0: जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
1: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी।

रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में

0: झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजादपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। तेरह अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में

0: लज्जास्पद लगते हैं।
1: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर
2: शांति। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
4: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्यपुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
4: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
1: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
2: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
4: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
1: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूं। उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा,
4: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं,

0: आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद। इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं। मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

हेलो और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार म्यूजिकली योर्स। हम हैं रेनबो। तो अब समय हो चला है हिट एंड हॉट का, मतलब आपके ही पसंद के गाने, आपके ही कुछ फेवरेट सॉन्ग्स जो वन बाय वन मैं बजाने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं दो गानों से जो मुझे फरमाइश में आ चुके हैं और जो मैं प्ले करने वाली हूँ अभी। पहला गाना है तुमसे मिलना बातें करना, तेरे नाम फिल्म का ये गाना, पंकज माहौर जी की फरमाइश पर। और दूसरा गाना है अजय सखारे जी की फरमाइश पर, जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा। रमैया वस्तावैया फिल्म का ये गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ। बहुत ही सारे मैसेजेस आए हुए हैं, वो सारे मैसेजेस भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये दो गाने आप बैक टू बैक सुनिए और उसके बाद कुछ और फरमाइश लेके मैं मिलती हूँ आपको FM रेनबो पर।

एफएम रेनबो पर है आप मेरे यानी उर्वशी के साथ और कार्यक्रम चल रहा है हिट एंड हॉट। तो देखिए कुछ लिसनर्स के मैसेजेस जो आए हैं और कुछ फरमाइश भी आई है, एक एक करके मैं आप सभी के गाने बजाने की पूरी कोशिश करती हूं, लेकिन आप भी जानते हैं ना कि वक्त की कितनी कमी होती है। तो देखिए कुछ लोगों के नाम तो डेफिनेटली मैं पढ़ना चाहूंगी। ये एक बहुत ही प्यारे लिसनर है जॉन डी कैस्ट्रो, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने फरमाइश भी की है, लेकिन उन्होंने बोला है कि आप हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिएगा। तो बहुत ही स्वीट, थैंक यू सो मच जॉन। रोजी, पर्ल और विलिस डी क्रेस्ट्रो, पूरा परिवार हमको सुन रहा है, सो थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत आभार। उन लोगों के साथ साथ दिग्दर्शन और कविता गौड़ भी हमें सुन रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हमारी फरमाइश बजाइएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं लालगिरी गोस्वामी जी, हेमलता जी, हीना जी, हर्षित और खुशी गोस्वामी। उन्होंने मैसेज किया है कि बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपका बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है। यशवंत आमुटे जी, आडमुटे जी है हमारे साथ, फिरोज सिंह पोरिया जी है हमारे साथ, गुरमीत सिंह और मीता सिंह भी हमें सुन रहे हैं, नई दिल्ली से वो हमको सुन रहे हैं, और हमको विजेंद्र जी सुन रहे हैं, वो हमारे बहुत ही रेगुलर लिसनर हैं। पंकज महोड़ जी भी हमारे रेगुलर लिसनर्स, और हमको हीरामणि वर्मा जी भी सुन रहे हैं, उन्होंने भी अपनी जो है फरमाइश भेजी है। उनका पूरा परिवार रादर हमको सुन रहा है, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा जी, नोखेलाल वर्मा जी, ये सभी हम लोगों को सुन रहे हैं। मीरा सिंह हमें सुन रहे हैं, और उनके साथ भी, जैसे कि कहते हैं ना कि पूरा परिवार

साथ में बैठ के हमको सुन रहा है, मीरा सिंह जी, ज्योति जी, रोहतास जी, सोनम सिंह, अनामिका सिंह, ये सभी हमको सुन रहे हैं। अभिजीत जी भी सुन रहे हैं और उनका भी पूरा परिवार हमको सुन रहा है, तो डेफिनेटली सबके नाम तो मैं ले ही सकती हूँ, चाहे गाने अगर समय की वजह से ना बजा पाऊँ, लेकिन अभिजीत, श्रीमती सरिता, प्रणीता, प्रिंस, लाडला टुकटुक, ये सभी हम सबको सुन रहे हैं। हितेंद्र दास जी हमको सुन रहे हैं, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सी कविता भी भेजी है मुझे। प्रणव शिंदे जी हमें सुन रहे हैं, गोपाल जी, प्रमोद चिंचोलकर और बहुत ही और लोग हैं, सुनील जी हमको अकोला से सुन रहे हैं, सुरेश वैष्णव जी हमको सुन रहे हैं, और हमारे साथ दत्ता केदार पंढरपुर से जुड़े हुए हैं, प्रशांत जी हमारे साथ ठाणे महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, अशोक पाटिल जी वर्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आकांक्षा मनोज सिन्हा हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ी हुई हैं। बहुत ही सारे लिसनर्स हैं, बहुत ही खूबसूरत उनकी रिक्वेस्ट है सभी की, लेकिन आपको तो पता ही है कि कोशिश करने के बावजूद सबकी रिक्वेस्ट नहीं ले पाती हूँ। तो अभी जो दो बैक टू बैक रिक्वेस्ट में लेने जा रही हूँ, एक है दीपा पालकर जी की जरा जरा रहना है तेरे दिल में फिल्म का गाना, और दूसरा विजय लक्ष्मी शेट्टी जी की फरमाइश है तुम मिले दिल खिले क्रिमिनल फिल्म का गाना। तो चलिए ये दो बैक टू बैक गाने मैं आपको सुनवाने वाली हूँ FM रेनबो पे।

समाचार के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं। हाँ, हिट एंड हॉट चल रहा है और बहुत ही खूबसूरत से गाने आप सभी के रिक्वेस्ट के एक के बाद एक मैं बजाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अब तो आपको पता ही है कि कितना कम समय रह जाता है जब कार्यक्रम खत्म ही होने वाला है। अब थोड़ी ही देर में 20 मिनट में तो मैं यहाँ से आपसे विदा लेने वाली हूँ। लेकिन जाते जाते कुछ नाम डेफिनेटली मैं पढ़ना चाहूँगी जो लोग हमको सुन रहे हैं। हरजिंदर छिज्जा जी जो हमें पंजाब से सुनते हैं, उनके साथ जसवीर जस्सी, सीता और गीता, और उन्होंने कहा है कि अपनी पसंद का कोई भी खूबसूरत सा गीत सुना दीजिए और खुश रहिए और खुशियां बांटिए। अरे वाह, थैंक यू सो मच। दूसरा, जिला मुरादाबाद से हमें सुन रहे हैं मुकेश कश्यप, उनके साथ शीतल, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, ये सभी लोग हमें सुन रहे हैं। और उन्होंने भी मैसेज किया है कि हमें भी किसी भी गाने में अगर आप शामिल करेंगी तो हमें अच्छा लगेगा। जी, थैंक यू सो मच। अभिजीत जी हमें सुन रहे हैं और उनके साथ श्रीमती सरिता जी, प्रणीता, सिद्धांत, प्रिंस, एकांश और टुक टुक, उनका नाम मैंने पहले भी लिया, वो भी हमें सुन रहे हैं। उनके साथ साथ हमारे साथ पंजाब से ही जुड़े हुए हैं वडिंगखेड़ा से मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा, जो हमको काफ़ी समय से सुन रहे हैं। उसके साथ प्रिया हमारे साथ छत्तीसगढ़ से, विक्रम जी, अशोक पाटिल जी, मेहर अरोरा, गुरमीत सिंह, मीता सिंह, लालगिरी गोस्वामी जी और बहुत ही सारे लोग। और सभी के गाने तो मैं डेफिनेटली आपको पता ही है कि नहीं प्ले कर पाऊंगी, लेकिन अभी जो दो गाने मैं बजाने वाली हूँ, एक गाना राकेश माथुर जी की फरमाइश पे है, सावन आया है, और दूसरा गाना आकांक्षा जी की फरमाइश पे है। और ये गाना सरप्राइज रखते हैं, ठीक है। आकांक्षा जी ने हमें फरमाइश तो भेजी ही है तो उनको तो पता है उन्होंने कौन सा गाना भेजा है, लेकिन आप सभी के लिए ये एक सरप्राइज है। आप सुनिए और बताइएगा कि आपको ये गाना कैसा लगा।

0: और ये रिक्वेस्ट सुन के तो मैं भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। आकांक्षा जी ने ये रिक्वेस्ट भेजी थी और उन्होंने बहुत ही प्यारा सा स्वीट सा मैसेज किया है कि ये जो गाना है वो मुझे डेडिकेट करना चाहती थी। ओह थैंक यू सो मच। लिसनर्स अभी अपनी पसंद के गाने ही रिक्वेस्ट करते हैं ज़्यादातर, और वो करते भी हैं, उनका हक भी है ये कि रेडियो पर उनकी ही पसंद के गाने सुनाने के लिए तो हम लोग आते हैं। लेकिन कभी कभी जब कोई लिसनर अपनी पसंद की वजह जो गाना हमें शायद अच्छा लगे वैसा कोई गाना हमारे लिए डेडिकेट करते हैं तो बहुत ही स्पेशल लगता है। तो आकांक्षा जी बहुत ही ज़्यादा थैंक यू है आपको कि आपने ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना मुझे डेडिकेट किया, थैंक यू सो मच। और हिट एंड हॉट में हैं आप मेरे साथ यानी उर्वशी के साथ FM रेनबो पर। बहुत ही खूबसूरत गाने हमने बजाए आप सभी की पसंद के, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कुछ कंप्लेंट्स तो मैं लेके जाने ही वाली हूँ कि उर्वशी जी आपने हमारी पसंद का गाना नहीं बजाया। कुछ कुछ मेरे लिसनर्स बहुत प्यारे हैं, वो रूठ भी जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी आऊँ तो उनकी पसंद के गाने सुनाकर उनको मना भी लूँ। अभी कुछ कुछ मैसेज मैं पढ़ लेती हूँ, कुछ नाम जो डेफिनेटली हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। दीपा पालकर जी ने कहा है कि उर्वशी उर्वशी आपके ही नाम का गाना है तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। अरे थैंक यू सो मच दीपा जी। पंकज जी कहते हैं उर्वशी उर्वशी बहुत ही बढ़िया गाना, थैंक यू। राकेश माथुर जी थैंक यू बोल रहे हैं, उनको भी गाने बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। जब मैं सभी लिसनर्स के नाम ले रही थी तो कुछ कुछ नाम जो छूट गए थे तो वो बोल रहे हैं। संदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने बोला है कि हम भी सुन रहे हैं आपको। जी जी संदीप जी बिल्कुल आप सुन ही रहे हैं हमें और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है आपके साथ। ज्योति मन्नत भरत कमल ये सभी सुन रहे हैं हमें, सो थैंक यू सो मच। आपकी पूरी फैमिली का खूब खूब आभार। मुकेश जी हमें सुन रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि मैं भी हूँ, मैं हमेशा ही सुनता हूँ जब हिंदी गाने बजते हैं। अरे जी जी मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। और मुझे पता होता है लेकिन कभी कभी इतने मैसेजेस आ जाते हैं ना कि कुछ कुछ मैसेजेस नीचे चले जाते हैं तो मैं चाहूँ फिर भी उनको नहीं पढ़ पाती हूँ, तो क्या ही करें। लेकिन आई एम श्योर कि आप सभी को मज़ा आ रहा होगा आज के शो में। और जाते जाते मुझे ना फिरोज जी ने एक बहुत प्यारा सा मैसेज किया है, फिरोज सिंह पुरिया जी ने, कि बहुत ही कम टाइम बचा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्ले एनी सॉन्ग ऑफ योर चॉइस। उनकी भी फरमाइश पूरी नहीं हुई थी लेकिन उन्होंने मुझे ये मैसेज किया, बहुत ही स्वीट, थैंक यू फिरोज जी। लेकिन इसी बात पर जाते जाते मैं आपकी ही फरमाइश का गाना लग जा गले प्ले करते करते जाती हूँ, तो आप अपना पसंद का गाना एंजॉय कीजिए और 2 बजे आप सुनेंगे समाचार भी। चलिए मिलते हैं फिर से।
1: बड़े खुद्दार थे मदन भैया, अपने आदर्शों को वो किसी के सामने न झुकने देते थे न दबने देते थे। वो कौन थी कि गीतों की सफलता पर मुमकिन था कि उन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिले, वो अवार्ड मदन भैया को नहीं मिला। और न मिलने पर जब मैंने अफसोस जाहिर किया तो वो कहने लगे, मेरे लिए ये क्या कम अवार्ड है कि तुम्हें अफसोस हुआ।

0: The government has refuted a video circulating online with the claim that an IAF MiG-29 fighter jet crashed during landing due to pilot error. The fact-check unit of Press Information Bureau, PIB, said the video is fake and being circulated by the Pakistani propaganda accounts. It said the footage in the claim is from a video game. The fact-check unit has urged people to report any suspicious content related to the central government at factcheck@pib.gov.in. Director General of News Services Division, Akashwani, Rajiv Kumar Jain, administered the Swachhata Pledge to officers and staff at the premises of Akashwani in New Delhi today. Additional Director General News, S. Subramanian, was also present on the occasion. The pledge was administered as part of the ongoing Swachhata Hi Seva 2026 campaign being observed across the country from today till the 2nd of next month. In men's cricket, India will play the final match of the three-match T20 international series against Afghanistan at the Arun Jaitley Stadium in Delhi today. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. At the stock markets, the Sensex was trading nearly flat while the Nifty was trading moderately higher during the afternoon session today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates SEMICON India 2026 in New Delhi, says India's semiconductor ecosystem expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth. Union Minister Ashwini Vaishnav says government has set a target to support 200 startups and companies to design chips in India across spectrum of semiconductor requirements. BJP's month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan begins today to mark Prime Minister Narendra Modi's 25 years of public life and service. PM Vishwakarma scheme completes 3 years today. India slams Pakistan for providing permissive environment for terrorists responsible for September 11 attacks in the United States. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। भारत ने अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को समर्थन देने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और क्रिकेट में भारत आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है।
2: दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी

0: एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है।
0: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत में निर्मित चिप अब देश के भीतर और दुनिया भर में उपलब्ध हैं। श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण में के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
2: सेमिकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और पांचवा स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। छठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के उद्देश्य से 200 स्टार्टअप और कंपनियों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: 2 PM समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं, ये आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं अनुच्छेद 370 के संबंध में।
0: जम्मू कश्मीर में सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार जम्मू कश्मीर की संवैधानिक तारीख के अब तक के सबसे बड़े फैसले को दर्शाती है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में बड़ा बदलाव आया। सड़क रास्ते हो या रेल नेटवर्क, पर्यटन हो या सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में दिन ब दिन तरक्की और समृद्धि देखने को मिल रही है। इस सिलसिले में हमने सीनियर राजनीतिक विश्लेषक हकीम रोहला गाजी से बात की तो उन्होंने कहा,
5: पिछले 7 सालों से जो नया कश्मीर बना है उस कश्मीर में सुख शांति खुशहाली समृद्धि हर एतबार से हम देखें خواہ وہ پیس ہو، ٹورزم ہو، ہماری اکانومی ہو۔ کشمیر میں آئے دن وہ ہڑتالوں کا کلچر وہ ختم ہوا، اب آئے دن ہمارے ہاں فیسٹیولز، دن رات کے ہمارے ٹورنامنٹس جو ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں خوشحال کشمیر دیکھنے کو ہمیں آرٹیکل 370 کے ہٹنے سے نظر میں آیا۔
4: انوچھید 370 کے ہٹنے کے بعد جموں کشمیر کے وکاس کو سنشچت کرنے کے لیے موجودہ کیندریہ سرکار ہر سمبھو قدم اٹھا رہی ہے۔

0: लेकिन जरूरी है कि यहाँ की आवाम भी इन अवसरों का पूरा फायदा उठाए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन और उनके 25 वर्ष की जनसेवा के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। गुजरात का वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह नगर है। श्री शाह ने जनसेवा का संदेश फैलाने के लिए वडनगर से वाराणसी तक साइकिल रैली को रवाना किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत से सर्वथा स्पष्ट होता है।
2: हमने जो कल्पना रखी है 2047 में पूर्ण विकसित भारत की, वो कल्पना की पूर्ति के लिए अनेक ऐसा युवा चाहिए, अनेक ऐसे किशोर चाहिए, अनेक ऐसे बालक चाहिए जो आने वाली 3 पीढ़ी तक नरेंद्र मोदी के रास्ते पर अपने जीवन को आगे बढ़ाकर भारत प्रथम के मंत्र को सफलता के साथ करे।
1: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से गुजरात के वडनगर के लिए बाइक रैली रवाना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज पूरे पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सोशल मीडिया संदेश में महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
3: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
1: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। इस योजना में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री को जन्मदिन के अवसर पर देश विदेश से शुभकामनाएं मिल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भारत में रूसी दूतावास ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संदेश साझा किया। इस बीच नई दिल्ली स्थित कई दूतावासों और विदेशी राजनयिकों ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से श्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। जापान के राजदूत ओनो केइची ने विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन पर मिल रही इन शुभकामनाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक आशीर्वाद देश की जनता की सेवा करने के उनके संकल्प को अधिक दृढ़ बनाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है।
4: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 30 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक काम और हुनर से जुड़े विश्वकर्माओं को आगे बढ़ने में मदद करना है। इसके तहत उन्हें आधुनिक औजार, प्रशिक्षण, आसान शर्तों पर ऋण और बाजार से जुड़ने का अवसर दिया जाता है ताकि वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब तक करीब 24,50,000 विश्वकर्माओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक विश्वकर्माओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण महज 5% की दर पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 18 लाख से ज्यादा आधुनिक टूल किट भी इंडिया पोस्ट के माध्यम से विश्वकर्माओं के घर पहुंचाए जा चुके हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक हुनर को आधुनिक साधनों से जोड़कर विश्वकर्माओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। श्री हरीश ने आतंकवादियों के साथ साथ उन्हें सहायता, वित्त पोषण, सहयोग और शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आग्रह किया।
5: Draining the swamp that provided an
6: इस दलदल को सुखाना बेहद जरूरी है जिसने 9/11 के साजिशकर्ताओं को पनाह दी। उसके बाद के वर्षों में भी लश्करे तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे अलकायदा से जुड़े संगठनों को भी मदद करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे पनाह गाहों की निरंतरता को रोकने के लिए एकजुट होना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे और व्यक्ति किसी भी देश या उसके नागरिकों पर ना थोपे जाएं और कोई भी अपने परिवार और प्रियजनों को
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: यह आकाशवाणी।

0: अभिनंदन करती हूँ। और यकीन मानिए, हर बार की तरह हमारा आज का ये अंक भी बहुत ही मार्मिक होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कर्नल विवेक चौहान, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। और हमारे लिए आज बहुत ही हर्ष की बात है कि इनके कार्यकाल में इनकी उपलब्धियां हम सभी के साथ आज ये शेयर करेंगे इसी प्रोग्राम में, जिसे आप और हम कहते हैं संदेश टू सोल्जर्स। तो आइए, तहे दिल से हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल विवेक चौहान का, जो है एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर। कर्नल विवेक चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है संदेश टू सोल्जर्स इस कार्यक्रम में। और हर बार की तरह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब हम इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भारतीय बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि एक सफल परीक्षण के बाद, ट्रेनिंग के बाद आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। और जब आप ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आप अपना सर्वस्व लुटा देते हैं, क्योंकि आप यही मानते हैं कि आपका देश सर्वप्रथम है। आपकी यात्रा, आपका वृत्तांत जरूर आपकी जबानी सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं, आपने भारतीय सेना को ही क्यों चुना? किस तरह भारतीय सेना आपके लिए सर्वोपरि हो गई? कौन सा ऐसा निर्णय था जिसने आपका जीवन बदल दिया और आज आप हमारे साथ हैं अपनी यात्रा को सुनाने के लिए?
1: गीतिका जी, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत धन्यवाद है इस प्रोग्राम पे इनवाइट करने के लिए, और आपके सभी सुनने वालों को भी मेरी तरफ से तहे दिल पर नमस्कार, गुड इवनिंग। बढ़िया क्वेश्चन है, यू नो, कि क्यों फौज ज्वाइन करी और क्या मोटिवेशन थी फौज ज्वाइन करने के लिए। तो हम पहाड़ी इलाके से हैं, मैं हिमाचल से हूँ, और वहाँ जो है फौज, डिफेंस फोर्सेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट मायना रखता है, हमारी कल्चर में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, एंड काफ़ी लोग एस्पायर करते हैं फौज ज्वाइन करने के लिए। ऑन अ मोर पर्सनल लेवल, मेरे दादाजी फौज में थे, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई करी, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस जो थे उसमें उन्हें गोली लगी। उसके बाद मेरे पिताजी भी फौज में थे और उन्होंने 1971 वॉर में हिस्सा लिया, बाद में उनको भी जो है ऑपरेशंस में गोली लगी थी। तो वाइल ग्रोइंग अप, बड़े होते समय उनसे कई बार उनकी गाथाएं सुनी, उनकी कहानियां सुनी, दैट वाज अ लॉट ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। तो यू नो, और उस एनवायरनमेंट में एज अ इम्प्रेशनेबल यंग मैन जो है फौज जो है बिल्कुल जहन में रही, और इसलिए यू नो इट वाज ऑलवेज अ विश एंड अ डिज़ायर एंड एस्पिरेशन कि मैं भी फौज ज्वाइन करूँगा। सो दैट इज़ हाउ आई यू नो एंडेड अप ज्वाइनिंग।
0: इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि आप किस तरह से, किस प्रक्रिया के तहत भारतीय सेनाओं में अपने लिए एक मुकाम हासिल कर पाए, उससे पहले अगर आपके जीवन की बात की जाए, आपके बचपन की बात की जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति का ना बचपन उसके जीवन में, आने वाली जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आपके बचपन की बात की जाए, एज अ स्कूल किड कर्नल विवेक चौहान, जो उस वक्त सिर्फ विवेक थे, अपने घर परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, किस तरह के बच्चे थे?
1: तो मैं बेहद बदमाश बच्चा था, है ना, मतलब मेरे माँ बाप भी शायद मुझसे काफ़ी तंग थे, और शैतानियाँ करने में और शैतान बच्चों के साथ रहने में मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। यहाँ तक कि यू नो एज अ 5-year-old पूरी कॉलोनी के जो साइकिल्स के टायर, उस टाइम साइकिल्स होती थी सबके पास, तो उनके जो है वॉल निकाल के फिर उसके बाद बड़ी मज़ा आया उनको देख के कि सब चल रहे हैं, यू नो। सो मैं शैतान बच्चा था, पॉसिबली जैसे जैसे उम्र बढ़ती रही तो थोड़ा सा और जो है डिसिप्लिन्ड हो गया और थोड़ा शांत हो गया, बट डेफिनेटली एज अ यंग चाइल्ड आई वाज नॉट एन आइडियल फॉर एनीबडी।
0: और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सेना ने, आपकी सर्विसेज ने, आपकी ट्रेनिंग्स ने, भारतीय सेना ने आपको पूर्ण रूप से बदल दिया।
1: हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल सही होगा। मैं NDA से हूँ और फिर IMA से पास आउट हुआ, और ये दोनों इंस्टीट्यूशंस जो हैं दुनिया में

0: नोन है, जानी पहचानी है, दैट दे टर्न मैन इन टू बॉयज इन टू मैन, एंड डिसिप्लिन इज अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ इट. एंड यू नो वंस, जैसे मैंने कहा, एक बारी थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई तो स्वभाव में बदली, ऊपर से जो ये डिसिप्लिन की बाउंड्रीज थी, इससे जो है आई हैव बिकम अ मोर डिसिप्लिन्ड और पॉसिबली अ बेटर पर्सन.
1: बिल्कुल. आपकी व्यक्तिगत रूप से बचपन से इंजीनियरिंग, यानी कि इंटरनल इंजीनियरिंग कैसी भी क्यों ना हो, आर्म फोर्सेस उसे पूरी तरह से बदल देती है, हर पेज पुर्जे को अपने उचित स्थान पर जोड़ देती है. जिस तरह का ऑफिसर आपको बनाना है उस तरह का ऑफिसर बनाती है.
0: ये बिल्कुल आपने सही पहचाना. दी ट्रेनिंग अकेडमीज, ये विभिन्न किस्म के लोग अलग कल्चर अलग बैकग्राउंड से लेते हैं, एंड दे ट्रेन यू into the finest that the country produces, sometimes with pain, sometimes without pain, but the end result is always good.
1: बिल्कुल, निश्चित रूप से. तो पहले NDA, उसके बाद फिर इंडियन मिलिट्री अकेडमी, क्योंकि एक साल का आपको वहाँ पर भी ट्रेनिंग पूरी करनी होती है. कहाँ ज़्यादा मज़ा आया? क्योंकि कहते हैं कि बेसिक बिहेवियर नहीं बदलता है, वो अंदर शैतान बच्चा भले ही उसने आगे शैतानी ना की हो, लेकिन उसने जीवन का लुत्फ, जहां पर भी वो रहा, जो भी काम उसने किया, उसने जरूर उसको एंजॉय किया. और आपके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा, चाहे स्कूल में रहे, भले ही शैतान रहे, लेकिन जब आर्म फोर्सेस ज्वाइन की, भले ही सोचने का तरीका बदला, काम करने का तरीका बदला, पर जो अंदर का बच्चा था ना, वो जीवित रहा और वहां पर भी उसने एंजॉयमेंट पूरा किया. तो कहां ज्यादा मजा आया?
0: सो व्यक्तिगत तौर पे मेरे को लगता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मुझे ज़्यादा मज़ा आया. जब हम इंडिया गए तो वी वर यंग स्कूल चिल्ड्रन, बट व्हेन वी केम टू द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जब हम IMA पहुँचे, तो काफ़ी बड़ा हिस्सा हमारे कोर्समेट्स जो हैं वो कॉलेज बाहर अपना एजुकेशन करके हमें ज्वाइन किए थे. सो दैट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस, है ना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनकी कहानी सुनना, उनके फ्रेंड्स ग्रुप में, सोशल सर्कल्स में घूमना, दैट वाज अ लिटिल बिट मोर, थोड़ी सी फ्रीडम का एहसास थोड़ा ज़्यादा है. एंड देयरफॉर आई एंजॉयड माय स्टे इन IMA. नॉट दैट NDA में नहीं था, बट कंपैरेटिवली IMA वाज अ मच बेटर टाइम.
1: NDA एकदम स्कूल पास आउट करने के बाद ज्वाइन करते हैं.
0: बिल्कुल.
1: और इंडियन मिलिट्री एकेडमी आप CDS का एग्जाम देने के बाद, या फिर वो जो NDA से जाकर फिर IMA ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे डिफरेंट सेट ऑफ बच्चे आते हैं.
0: हां जी.
1: जिन्होंने हो सकता है कि पहले आर्म फोर्सेस लाइफ ना देखी हो. एक बात और जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपके व्यक्तित्व को जानने के बाद ना, मुझे कहीं ना कहीं जिज्ञासा हो रही है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अब मैं सुन रहे होंगे, जो चाहते हैं उनके बच्चे आर्म फोर्सेस ज्वाइन करें. मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब बच्चा स्कूल से निकल कर ना आर्म फोर्सेस जाता है, तो एक अलग माइंडसेट के साथ जाता है. हम तो राजा हैं अब, लेकिन वहां जाके एकदम एंटायर डिफरेंट माहौल. आपके घर में भी आप बहुत ही स्ट्रिक्ट माहौल में पले होंगे, क्योंकि कहते हैं कि आर्मी ऑफिसर्स का जो घर होता है, वहां लाइफस्टाइल इतनी इजी नहीं होती, एवरीथिंग इज डिसिप्लिन. तो आपके लिए तो डिसिप्लिन से निकलकर डिसिप्लिन में जाना था, फिर भी क्या अंतर था कि एक शैतान सा बच्चा एकदम शांतशालीन ऑफिसर बन गया?
0: सो ये आपकी बात सही है कि क्योंकि मैं फौजी बैकग्राउंड से था, फादर फौज में थे, तो घर पे भी काफ़ी डिसिप्लिन का और तौर था. लेकिन एक ट्रांजिशन है, यू नो, जब आप डिसिप्लिन विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं, और जब आप अफसर बनने के बाद डिसिप्लिन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्ट एंड फेथ रहते हैं, जो आपके कंधों पे जो है सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है, और आपके सहयोगी होते हैं, आपके जूनियर्स होते हैं, जिनके लिए आपको यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम, यू हैव टू वर्क फॉर देम, यू आर यू नो यू हैव टू डू मैनी थिंग्स फॉर देम. सो वाइल डिसिप्लिन इज एवर प्रेजेंट, दोनों क्षेत्र में रहता है, लेकिन डिसिप्लिन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ यूनिक ट्रांजिशन, एंड दैट आई थिंक इज व्हाट ट्रेनिंग टीचेज यू ओवर 4 years, कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, और आप कैसे जो है प्रेशर को सहते हैं, उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं. सो आई थिंक दैट इज द ट्रांजिशन बिटवीन यू नो बिफोर ज्वाइनिंग द फोर्सेस एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द फोर्सेस.
1: जी, एक सवाल और पूछना चाहती हूँ. मैं बहुत समय से, जब मैं अपने कॉलेज डेज में थी और मेरे दोस्त जब इंटरमीडिएट अकेडमी उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद वो काफ़ी बार कहते थे कि अंतिम पग उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. अंतिम पग इंटरमीडिएट अकेडमी देहरादून में स्थित, जब भी इसका नाम लिया जाता है तो आधे से ज़्यादा लोगों का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, और हम जैसे लोगों के लिए वो मंदिर है और हमारा सर झुक जाता है. अंतिम पग क्या?

0: So Anting Pag is that final step which changes you from a carefree bindaz under trainee to a responsible decision making officer. कहने को तो वो एक सेकंड का और एक कदम है, लेकिन दैट ट्रांजिशन इज वेरी वाइड, यू नो. आप उस दिन रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और हर डिसीजन, हर जो आप सोच है वो आपकी बदल जाती है. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सच अ लैंडमार्क इवेंट इन एक फौजी ऑफिसर के लाइफ में जब वो ये ट्रांजिशन करते हैं.
1: वाह क्या बात है. उस दिन से समझ में आने लगता है कि देश की मिट्टी का मोल क्या है, और उसी का तिलक लगाकर आप कहना चाहते हैं कि हमने अपना जीवन अपने देश के नाम कर दिया. केसरी फिल्म से आप ही की फरमाइश पर ये गाना हमारे लिसनर्स तक पहुंचा रहे हैं हम. और कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो हमारी धड़कन होते हैं, वो हमारे दिल की बात कहते हैं. और जब एक ऑफिसर के दिल की बात ये गाना कहता है तो समझ जाइए उसके लिए, उसकी सर्विसेज, उसके लिए सेना के क्या मतलब है.
2: अब जाके कहीं हमने सर पे

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, और संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ हैं कर्नल विवेक चौहान, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, लेकिन इनका जोश, इनका जज्बा, हर एक एक शब्द इस बात का यहाँ पर परिचायक है, साबित करता है कि इनके लिए भारतीय सेना क्या मायने रखती है। कर्नल चौहान, आपसे पूछना चाहते हैं, ट्रेनिंग्स कहीं ना कहीं आपको तैयार करती हैं, लेकिन क्या जब एक ऑफिसर जब कमीशन हो जाता है और जब उसको पोस्टिंग्स दी जाती हैं, जब उस पर कार्यभार सौंपे जाते हैं, तो जिंदगी जैसे 360 डिग्रीज टर्न लेती है, ऐसा होता है क्या?
1: जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा अंतिम पग, सो द अंतिम पग या लास्ट स्टेप जो है वो आपको ऑफिसर बना देता है, पर आप सही मायने में ऑफिसर तभी बनते हैं जब यू कैन कमांड एंड अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ योर सोल्जर्स। सो ये जो ट्रांजिशन है, जब आप यूनिट जाते हैं तो वहाँ विभिन्न किस्म के सोल्जर्स मिलेंगे आपको, कुछ आपकी उम्र के होंगे, बिकॉज यू गेट कमीशनड एट 21, 22, 23 ईयर्स ऑफ एज, सो कुछ आपकी उम्र के होंगे, कुछ उम्र में आपसे ज़्यादा होंगे, कुछ काफ़ी ज़्यादा होंगे, रैंक में आप शायद उनसे ऊपर हों, बट कॉम्पिटेंस में, स्किल लेवल में, एक्सपीरियंस में अभी आप वहाँ पहुँचे नहीं। सो जब आप वहाँ पहुँचते हैं, यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा स्टेप्स, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है टू मेक योरसेल्फ इक्वल टू इफ नॉट बेटर देन देम, एंड देन ओनली यू विल कमांड देयर रिस्पेक्ट, अर्न देयर रिस्पेक्ट एंड बिकम एन ऑफिसर इन द ट्रू सेंस। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज दैट सडनली फ्रॉम अ वेरी स्केड्यूल्ड इन्वायरमेंट, जहाँ पे आपको कब उठोगे, कब खाओगे, कब पियोगे, कब ट्रेनिंग करोगे, कब सोओगे, वो सब जो है वो राइटिंग में आपको मिलता था, एंड नाउ यू कम इन टू अ सिचुएशन वेयर देर इज लॉट ऑफ अनसर्टनिटी। अनसर्टनिटी के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 30, 35, 40, 50 पीपल, यू हैव टू मेक डिसीजंस, यू हैव टू यू नो डू मल्टीपल थिंग्स, यू हैव टू टेक रिस्क, बिकॉज दीज आर लाइफ लॉन्ग एसोसिएशंस। सो यू नो सडनली मैच्योरिटी इज थ्रस्ट ऑन योर शोल्डर्स, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी पेनफुल एंड वेरी नेसेसरी स्टेज। आप तभी जब जब आपके सोल्जर्स आपके साथ आराम से बात कर सकते हैं, दे कैन अप्रोच यू, आपके साथ ट्रेन कर सकते हैं, आपके साथ खा सकते हैं, पी सकते हैं, दैट इज द डे यू ट्रूली बिकम एन ऑफिसर।
0: और मुझे लगता है कि शायद ये वो एक क्षण होता होगा जहाँ पर आप स्वयं से लड़ते हैं। मैदानी जंग में लड़ना तो अभी बाकी है, लेकिन यहाँ सबसे पहली लड़ाई खुद के साथ है।
1: बिल्कुल, बिकॉज यू हैव टू लीड, यू हैव टू गेट अप एंड गेट गोइंग, है ना। वो आराम का कि कोई बता देगा कब उठना है, कब करना है, वो जमाना चला गया, वो टाइम चला गया, एंड देयरफॉर यू हैव टू फाइट अगेंस्ट योरसेल्फ टू प्रूव दैट यू आर एज गुड एज द ट्रूप्स दैट यू लीड, जिनकी कमांड आपको दी गई है। सो ये पहली लड़ाई आपके साथ है, बिकॉज दैट हार्ड वर्क टेक्स एफर्ट।
0: अभी आपने जितनी बातें मुझे बताई हैं, कहीं ना कहीं एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आया है, और अक्सर जब हम इन तीन शब्दों को देखते हैं तो ये मात्र शब्द नहीं रह जाते, इनका मायना, इनकी परिभाषा बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अगर मैं किसी भी ऑफिसर से पूछूंगी तो बस वो यही कहेंगे, नाम नमक निशान। नाम नमक निशान क्या है?
1: सो दिस इज द ethos ऑफ द इंडियन आर्मी, एंड मैं इसको थोड़े कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ। जब मैं कमीशन हुआ तो जो मेरे ट्रूप मेरी यूनिट के ट्रूप्स थे वो हिल्स और हिल ट्राइब्स में से थे, तो वो कश्मीर घाटी से, जम्मू से, हिमाचल

0: से, उत्तराखंड से, असम से, और जो नॉर्थ ईस्ट की सेवन सिस्टर्स हैं उन सब के से आए हुए थे। नागास थे, मीजोस थे, मणिपुरी थे, मेघालय से थे, त्रिपुरा से थे। एंड अगर देखा जाए तो जो कश्मीर से है और जो नागालैंड से है, उसके बीच में देर इज़ नो अफिनिटी, देर इज़ नथिंग कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन एक यूनिट में, एक टुकड़ी में होने के वनस्पत, बिकॉज यू ट्रेन टुगेदर, यू ईट टुगेदर, यू लिव टुगेदर एंड समटाइम्स यू डाई टुगेदर, आपस में वो एक दूसरे का भाईचारा, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जीवन व्यतीत करने के लिए, यू ब्रेक, जैसे बोलते हैं ना, आपने नमक जो है एक दूसरे का खाया है, सो दैट इज़ द फर्स्ट एसेंस, दैट कमराडरी या आपसी भाईचारा, ये फौज आपको सिखाती है। देन ये टुकड़ी जो है आपके ऊपर आंच ना आए, आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, आप लड़ाई में, ऑपरेशंस में जा रहे हैं या ट्रेनिंग में कर रहे हैं, आपकी कोई गलती ना निकाले, दैट इज़ वाई यू ऑपरेट एज अ ग्रुप, टुकड़ी, वो जो है आपके निशान के लिए, आपके नाम के लिए, ठीक है, वो जो है कि आपकी यूनिट का नाम खराब ना हो। एंड इफ यू लुक एट इट एट अ लार्जर लेवल, ठीक है, यूनिट्स, ग्रुप्स ऑफ यू नो, जो भी फॉर्मेशंस हैं, कि देश का निशान, फौज का निशान जो है उस पे आंच ना आए, ठीक है। सो राइट फ्रॉम द फैक्ट दैट एट द लेवल आप अपने भाई के लिए लड़ रहे हो, आप अपनी यूनिट के लिए लड़ रहे हो, और आप अपने देश के झंडे के लिए लड़ रहे हो, दैट इज द कोर इथॉस ऑफ द इंडियन आर्मी, एंड देयरफॉर नाम नमक निशान।
1: जी, नाम नमक निशान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर सिपाही, हर ऑफिसर, उन सभी के लिए जो कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कि आपकी पोस्टिंग्स के बारे में। सबसे पहले आप भटिंडा में डिप्लॉय हुए, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग आई, उसके उपरांत फिर कैसे सिलसिला आगे बढ़ता रहा?
0: मैं ऐसी यूनिट में था जिनकी कुछ जगहों पे टेन्योर्स थोड़े लंबे रहते हैं, तो बठिंडा में इनिशियली कमीशन हुआ, और बीच में हमें काफ़ी कोर्सेज करने पड़ते हैं, तो 1.5-2 साल जो है हमारे कोर्सेज में निकल जाते हैं, अलग अलग विभिन्न किस्म की ट्रेनिंग होती है, और वो जब ख़त्म हुए तो मेरी सिलेक्शन हो गई। एक डिप्लॉयमेंट हो रही थी यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनन, ये इसराइल लेबनन बॉर्डर पे यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग मिशन है, उसमें नॉर्वे हट रहा था और इंडियन कंटिंजेंट वहाँ डिप्लॉय हो रहा था, तो उसका हिस्सा बनने का मेरी सिलेक्शन हो गई, और फिर मैं वहाँ डिप्लॉय हो गया। उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि हालांकि मैं इंडियन आर्मी के साथ और इंडियन यूनिट के साथ गया था, आई वॉज़ इन अ मल्टी नेशनल यूनिट कॉल्ड द फोर्स मोबाइल रिजर्व, जिसमें 7 डिफरेंट नेशंस के ट्रूप्स थे, तो एक एक प्लेटून जो है अलग अलग देश से थी, तो वी हैड आयरलैंड के थे, फिनलैंड के थे, घाना के थे, फिजी के थे, पोलैंड के थे, नेपाल के थे, विच वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज यू नो ऑन फॉर द फर्स्ट टाइम इतनी क्लोजली हम जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं, ऑपरेट करते हैं और ट्रेन करते हैं।
1: जी, एक ही उद्देश्य के साथ एक साथ रहना अपने आप में ही कहते हैं कि बहुत खूबसूरत क्षण होते होंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग देशों के सिपाही, अलग अलग देशों से ऑफिसर्स, वहाँ की आर्मी के ऑफिसर्स वहाँ पर आपके साथ एक ही मिशन के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे में क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन कितना सुखद होता है, कितना प्यारा होता है, क्योंकि काम के अलावा भी आपको बहुत से क्षण ऐसे मिलते होंगे या काम के दौरान मिलते होंगे जहाँ आप को दूसरे की जबान में या दूसरे जो हमारा दूसरे देश का जो सिपाही है, सोल्जर है, ऑफिसर है, उसके बारे में जानने को मिलता है, उस देश के बारे में जानने को मिलता है, अपने देश को का नेतृत्व करने का मौका मिलता है, वो कितना प्यारा रहा?
0: बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, यू नो दिस वाज द पहली बार था कि मैं ऐसी डिप्लॉयमेंट पे था, और जब आप ऐसे जाते हैं तो थोड़ी बहुत आशंकाएं होती हैं कि कैसे दूसरे कैसे लोग होंगे, कैसे ऑपरेट करते होंगे, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, बट एडवांटेज ये रहता है कि आप साथ में रहते हो, दिन रात साथ में ऑपरेट करते हो, ट्रेन करते हो, खाना पीना साथ में खाते हो, सो इट इज

0: अपॉर्चुनिटी कि हम अपने देश का, अपने कल्चर का, अपनी प्रोफेशनलिज्म का डिस्प्ले करें, उसी प्रकार हम उनके बारे में सीखें। ये बड़ा, आप अगर कहीं बाहर पढ़ रहे हैं तो अलग बात है, नहीं तो इतनी क्लोज क्वार्टर्स पे इतने लंबे टाइम के लिए साथ रहना, साथ ऑपरेट करना बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। एंड यू नो, यू गेट टू नो ईच अदर बेटर, एक दूसरे को आप इंटीमेट तरीके से जान पहचानते हो। इट इज़ अ वेरी गुड फॉर शोकेसिंग आवर नेशन, शोकेसिंग द इंडियन आर्मी, इट्स कैपेबिलिटीज एंड what kind of people you know operate in that. So and you know on a matlab apart from training and all, social events, games, mm-hmm. sports, isme bhi interaction hota tha. So this was a very unique experience, and I think this kind of a cross cultural communication is very good for exposure and for displaying our capabilities to the world.
1: बहुत खूब। कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई बात, कोई याद जो यहाँ शामिल करना चाहते हैं, हमारे लिसनर्स तक पहुँचाना चाहते हैं?
0: या सो जस्ट ऑन द साइड, बाकी तो चलो करते थे हम, लेकिन हमने अपनी लोकल इंडियन राम और छम्मा छम्मा, उस टाइम पे जो है बड़ा फेमस गाना था, वो इंट्रोड्यूस किया अपने कैंप में। एंड जब भी सोशल इवनिंग होती थी, बाकी हो ना हो, छम्मा छम्मा पे जो है खूब जो है वहाँ पे भंगड़ा निकलता था। इट डिड नॉट डिपेंड वेदर यू आर फिन और यू आर आयरिश और यू आर यू नो फ्रॉम फिजी, लेकिन सब जो है छम्मा छम्मा पे इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज खूब दबा के डांस और मज़े लेते थे।
1: तो ये बात निश्चित है कि जब वो अपने घर लौटे होंगे तो उन्होंने अपने देश में भी जाकर खूब छम्मा छम्मा किया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उन्हें छम्मा छम्मा की धुन पर नाचने के लिए मजबूर कर दिया।
0: हाँ जी, बाद में भी मिशन जब हम वहाँ से वापस आ गए, लेकिन ये बातें जो है काफी सालों तक चलती रही कि कैसे जो है बाकी कंटिंजेंट्स जो है इंडियन सॉन्ग्स और इंडियन डांस से बड़े प्रभावित हुए और बड़ा आनंद लेते थे।
1: हमने ये तो सुना है, भले ही आपके यूएन मिशन की बात हो, हम जब भी आर्म्ड फोर्सेस पर्सन के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह अपनी अंतिम सांस तक करते हैं, लेकिन जिंदगी जीना तो कोई आप लोगों से सीखे, क्योंकि जब भी आपको क्षण मिलते हैं ना, आपको यही लगता है कि कल हो ना हो, बस यही एक क्षण है, इसको जी लिया जाए और इसको खूब तहेदिली के साथ उसे एंजॉय करते हैं।
0: आपने बहुत सही बात पकड़ी है।
1: तो कहते हैं कि जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा एक दिन होता है, लेकिन उसे एक दिन में पल कैसे चुराए जाए वो आप इनसे सीखिए। जिंदा दिली अगर आपको सीखनी है तो आप हमारे भारतीय सैनिक के नौजवान या फिर वो ऑफिसर्स जो रिटायर हो गए हैं, जो कार्यरत हैं, बस उन्होंने एक ही बात जानी है कि जीवन अमूल्य है और इस जीवन को ना आप जिस तरह से, जिस शिद्दत के साथ जीना चाहते हैं जिए, लेकिन अपने देश के प्रति अपने कार्यभार को या फिर अपने उद्देश्यों को कभी भी आप अपने आप से दूर ना कीजिए, आप फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी।

0: वेलकम बैक संदिष्ट सोल्जर्स, आज के संग में आपका पुनः स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद कर्नल विवेक चौहान, जो एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं। और हर बार की तरह ये शो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी किसी आर्मी ऑफिसर से बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस होने लगता है कि जैसे मैं देश के प्रति अपनी कृतज्ञता को यहाँ पर आप सभी के सामने रख रही हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत पल, जिस तरह से आपके लिए उस तरह से मेरे लिए, क्योंकि मेरे सामने बैठे हैं कर्नल विवेक चौहान। कर्नल विवेक चौहान, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, ऑपरेशन विजय हम सबके लिए किसी न किसी मायने में, चाहे वो आर्म फोर्सेस में रहा है या नहीं रहा है, पूरे देश के लिए ही ऑपरेशन विजय कहीं ना कहीं बहुत ही दिल के करीब रहा है। ऑपरेशन विजय का आपके लिए, आपका चयन होना, आपका वहां पहुंचना कैसा सीधा रास्ता था, क्या हुआ था जो आप उस मिशन का हिस्सा बन पाए?
1: तो एक्चुअली मेरे डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन विजय में वाज अ लिटिल कॉमेडी ऑफ एरर्स, वो थोड़ी गलती से हो गया। तो मैं लेबनन से वापस पहुंचा ही था, ऑपरेशन विजय अभी स्टार्ट हुआ था, मई का वक्त था, और प्लेन्स में भी जो है डिप्लॉयमेंट थी, हम लोग अपने अपनी जगह डिप्लॉयड थे। तो उससे पहले हमारी एक दस्ता जो है लगभग 22 आदमी का, वो द्रास में चला गया था, डिप्लॉय हो गए थे, और उसमें से दो कैजुअल्टीज हो गए और दो हमारे साथी नहीं रहे। सो जब ये हुआ तो वहाँ ऑफिसर नहीं था, तो मेरे सीओ साहब थे, उनको लगा कि ऑफिसर होना चाहिए, स्पेशली आफ्टर कैजुअल्टीज हो गए। तो किसी टाइम सुबह उन्होंने अपने बॉस जो जनरल साहब थे उनसे बात करी कि, और क्योंकि सीधे में बात नहीं कर सकते थे, उन्होंने बोला दैट मैंने एक ऑफिसर नॉर्थ भेजना चाहता हूँ। जनरल साहब को लगा नॉर्थ मतलब प्लेन्स के नॉर्थ में कहीं डिप्लॉयमेंट, तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही है, वेरी गुड, और आज ही निकालो। तो वो आज ही निकालो का इफ़ेक्ट ये हुआ कि सीओ साहब ऑफिस से निकले, मेरे को बोला 2 घंटे और आप निकलो सीधा द्रास के लिए। तो आपको समझना चाहिए कि 99 का टाइम था, मोबाइल फोन्स वगैरह वर नॉन एग्जिस्टेंट, कम्युनिकेशन, इंटरनेट ढीला था, रिजर्वेशन वर नॉट इजी टू गेट। तो हमारे को अपनी थोड़ी बहुत पैकिंग करी, 2 हथियार पकड़ा दिए, एमिनेशन पकड़ा दिए, 4 ग्रेनेड पकड़ा दिए, और मेरे साथी थे जो मेघालय से, हमको बोला कूच करो, चलो पहुँचो। तो रीचिंग द्रास इन इटसेल्फ वाज एन एडवेंचर। वो क्या ट्रेन के गार्ड के कैबिन में पीछे बैठ के, एंड ही वाज मोर देन हैप्पी, बड़े खुश हुए कि हम जा रहे हैं लड़ाई के लिए, तो आप हम मेरे साथ चलो। लिफ्ट लेते लेते जो है हम

0: दिल्ली के अंदर शेलिंग होती है या गोले गिरते हैं तो बड़ी दहकाने वाली गूंज होती है, बड़ा सीरियस टाइम होता है. सो इट इज़ यू नो क्रेडिट टू ऑल द सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी हु डिड अ वेरी इम्प्रेसिव जॉब. एंड जो लोग वहाँ जाते हैं दे विल अंडरस्टैंड कि हाई ऑल्टीट्यूड में उन हाइट्स पे चलना, खाना पीना, लड़ना कितना मुश्किल है. वहाँ का एक इंटरेस्टिंग वाक्या सुनाता हूँ. तो मैं पहुँच गए हम तो ऊपर नीचे जाना पड़ता था अलग अलग लोकेशंस में. तो हमारी गाड़ी जो थी उसके ऊपर कवर नहीं था क्योंकि वो हमारा इक्विपमेंट वैसा था. तो मेरे ड्राइवर थे जगतार सिंह जो सरदार जी थे. अभी हम जा रहे होते तो वहाँ हुक्म था कि सब जो है हेलमेट पहनेंगे. तो मैंने भी हेलमेट पहना होता. फिर मैं जगतार की तरफ देखता जो जिसने पगड़ी पहनी हुई थी. अब जब शेलिंग स्टार्ट होती तो मेरे को गिल्ट हो जाता कि जगतार ने जो है वो पगड़ी पहनी है, उसने हेलमेट नहीं पहना. तो मैं अपनी हेलमेट निकाल के आउट ऑफ गिल्ट जो है अपनी बेरे पहन लेता. फिर पास में कुछ आवाज़ें आती तो मेरे को डर लगता और कि नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती कि हमें बोला गया नहीं हेलमेट पहनना है, तो मैं हेलमेट पहन लेता. फिर थोड़ी देर बाद वो मेरी तरफ देखता और मैं देखता उसकी तरफ तो मुझे लगता ये तो गलत है, ये बिना हेलमेट के चल रहा है. और मैंने हेलमेट पहना हुआ फिर वही कहानी उल्टा, फिर बेरे पहनो फिर हेलमेट. सो दिस वाज यू नो दिस बिकम अ वेरी ह्यूज लाफिंग फैक्टर फॉर जगतार एंड फॉर अदर ट्रूप्स आल्सो.
1: बट ये बहुत अच्छा उदाहरण है नाम नमक निशान का कि जहाँ अपने साथ साथ अपने साथी की भी उतनी ही रक्षा करना जो आपके साथ उसी मिशन में शामिल है.
0: या आई थिंक दिस इज द इथॉस व्हिच वी आर ब्रॉट अप है ना. एंड while it was not funny that time, mm-hmm. today in hindsight I can laugh over it, mm-hmm. and so can Jagtar.
1: जी बिल्कुल. जगतार साहब भी जब इस बात को सोचते होंगे उसको उनको ज़रूर हंसी आती होगी. लेकिन जिस तरह की अपब्रिंगिंग कहूँगी मैं यहाँ इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि परवरिश हम अपने बच्चों के लिए कहते हैं, हमने अच्छी परवरिश दी है और इंडियन आर्मी भी इसी तरीके की परवरिश देता है कि अपनी रक्षा करो, अपने साथियों की रक्षा करो और वापस अपने साथी को लेकर आना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. मिशन में फतेह तो हासिल करनी ही करनी है पर इसे कभी नहीं भूलना कि साथी को कभी आधा अधूरा यानी कि आधे रास्ते पर नहीं छोड़ना.
0: बिल्कुल. इफ यू आर रेडी टू सैक्रीफाइस फॉर अ फेलो सोल्जर यू कैन डेफिनेटली सैक्रीफाइस फॉर योर कंट्री. आई थिंक दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग.
1: जी. अब मुझे एज अ हेलीकॉप्टर पायलट क्या चैलेंजेस रहे और क्या कोई ऐसी बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं क्योंकि कहते हैं ना थल से एकदम आप वायु थल से एकदम जमीन से एकदम आसमान में पहुंच गए. तो किस तरीके से एक आर्म्ड फोर्स पर्सनल जब एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में अपने कर्तव्य निभाता है क्या बदलाव आते हैं?
0: सो मैंने एविएशन के लिए अप्लाई किया बिकॉज यू नो आई ऑलवेज फेल्ट दैट आई फील एंड माय प्रिंसिपल इज दैट देयर इज वन लाइफ, एक जिंदगी है और हमें उसको वी हैव टू लिव इट टू द फुलेस्ट है ना. ऐसा कोई चीज़ छूटे ना कि हम 20 साल बाद रिग्रेट करें कि ये कर सकता था और नहीं किया. सो दैट इज़ वाई मैं अप्लाई किया. मैंने एविएशन के लिए सिलेक्ट हो गए, 1.5 साल ट्रेनिंग करी अलग जगह पे और फिर मैं श्रीनगर में जो है अपनी पहली पोस्टिंग मैंने मांगी थी वहाँ के लिए ऑपरेशनल एरिया के लिए तो वहाँ पे मेरे को पोस्ट कर दिया गया. सो वो ये जो बदलाव है ये बड़ा काफ़ी ज़्यादा यूनिक है क्योंकि जब आप ग्राउंड फोर्सेस में होते हैं तो आपकी रीच जो बड़ी लिमिटेड होती है और जब आप एविएशन में स्पेशली आर्मी एविएशन में जाते हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैजुअलिटी इवैक्यूएशन की काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे थी और ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा होते थे वैली में. सो पूरे कश्मीर घाटी अलग अलग जगह जहाँ लोग जाते भी नहीं हैं वहाँ जाने का मौका मिला, वहाँ अलग अलग ऑपरेशंस करने का मौका मिला. लेकिन सबसे यूनिक वो रहा कि जब कोई कैजुअल्टी हो जाती थी ऊंचाई में डिफ़िकल्ट एरियाज़ में वहाँ पहुँच के उनको टाइम से हॉस्पिटल तक लाना वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग इवेंट्स. देर आर मैनी जहाँ हम नहीं कर पाए बट the fact that we were able to do at some risk and sometimes quite a bit of risk is one of the few satisfying things that mere ko lagta hai in in in

0: माय करियर एज अ हेलीकॉप्टर
1: क्या खूब हमारे हम जो भी काम करते हैं उसमें एक सैटिस्फाइंग पॉइंट जरूर होता है और आपके लिए सैटिस्फाइंग पॉइंट था जहां पर जीवन दान यानी कि जीवन बचाया और अपने जीवन को जब हम उसका उसके बारे में नहीं सोचते हैं और ऐसा सिर्फ एक आर्म फोर्स पर्सन ही सोच सकता है कि जीवन को तो हाथ हथेली पे लेकर चलते हैं और इस उद्देश्य से चलते हैं कि मेरा जीवन तो दूसरे के लिए है
0: और इसका यू नो आई आल्सो वांट टू फोकस ऑन कैमराडरी जो हमारी आपसी मिलाप और एक दूसरे के लिए जो करने के लिए ठीक है इवन एट प्रोफेशनल एंड पर्सनल रिस्क तो उसके 5-6 साल बाद मैं राष्ट्रीय राइफल्स में था और एक टुकड़ी के ऊपर था कमांड कर रहा था ऑपरेशन चल रहे थे जंगल में और कुछ कैजुअलिटीज हो गई दो आदमी हमारे उनको गोली लग गई और एक उनमें से बहुत क्रिटिकल था बारिश का मौसम था एंड उनको इवैक्यूएट करना बड़ा मुश्किल रहता क्योंकि रोड दूर था तो मेरे एक साथी थे जिन्होंने मेरे साथ एविएशन में पहले सर्व किया था तो उनको मैंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया है वी आर इन अ डिफ़िकल्ट एरिया और अगर यहाँ से नहीं निकाल पाए तो ये शायद नहीं बचेंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट एसोसिएशन बट बिकॉज ऑफ दैट कमराडरी आपसी जो एक दूसरों के करने की जो जिद होती है जिसको बोलते हैं उन्होंने बोला बाकी तो आप करते रहो जो भी आपका प्रोसेस होता है हेलीकॉप्टर डिमांड के लिए लेकिन मैं यहाँ से टेक ऑफ करूँगा और वो आए ऐसी जगह पे आए जहाँ 200-300 मीटर दूर गोलियाँ चल रही थी ऐसी जगह लैंड किए जहाँ पे खेत में पानी था लेकिन उन्होंने एट प्रोफेशनल रिस्क एट पर्सनल रिस्क ये किया सो यू नो दिस इज पार्ट ऑफ द इथॉस दिस इज पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्मी दैट फॉर ईच अदर देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क लॉट ऑफ असिस्टेंस दैट वी गिव टू ईच अदर
1: कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखा जाता होगा ना यहाँ पे भी एक तरह का एक्सचेंज है आप अपने फेलो को कोई डिसीजन लेते हुए कोई निर्णय लेते हुए कोई जिम्मेदारी लेते हुए सीखते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है मैं भी कर सकता हूँ मैं भी कर सकता था दिस ऑल बट इट रिवॉल्व्स अराउंड यू
0: यस एंड इट गिव्स अ कॉन्फिडेंस टू द टू योर सोल्जर्स टू योर कॉलीग्स कि यू नो वी आर नॉट गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड हमें पीछे नहीं छोड़ेगा कोई ठीक है अगर आज हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं देयर इज समबडी लुकिंग आफ्टर अस So that's a very strong feeling and that's a very strong ethos.
1: जी इसके बाद फिर राष्ट्रीय राइफल्स में आप रहे जैसलमेर दिल्ली यहाँ सभी आई मीन पोस्टिंग्स में आपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया 23 साल बाद रिटायरमेंट वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर क्या आज भी इस बात को महसूस करते हैं और जब रिटायरमेंट लिया तो क्या उस रिटायरमेंट फेज से बाहर निकलना आसान था मुश्किल था ये जहन को मालूम हो रहा था कि कुछ कुछ छोड़ आया हूँ
0: एक्चुअली रिटायरमेंट से पहले ज़्यादा मुश्किल था
1: और रिटायरमेंट
0: से हाँ डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल था एंड अभी आपने सोशल मीडिया और बाकी जगह भी देखे होंगे देर इज़ अ यंग ऑफिसर हु हैज टेकन रिटायरमेंट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन आप एक जज्बे के साथ फौज में आते हैं उस जज्बे के साथ फौज में रहते हैं एंड इफ़ यू हैव टू ब्रेक अवे फ्रॉम दैट environment from that us group se aap nikalna chahte hain that is a very difficult decision so it took me almost 3-4 months of sleepless nights to decide ki chhodu ya nahi chhodu but finally jab maine choda uske baad actually mujhe realize isliye nahi hua kyunki mere paas time nahi tha I went to Indian Institute of Management Ahmedabad एंड वो ख़त्म होते ही मैं न्यूयॉर्क चला गया वहाँ पे मुझे जॉब मिल गई यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में सो दैट जब तक मुझे जो रियलाइज़ होना चाहिए था जो फ्री टाइम होना चाहिए था फौज से निकलने के बाद कि मैं हूँ कहाँ हूँ क्या कैसे हूँ वो रियलाइज़ हो नहीं पाया एंड यू आर राइट वंस एन ऑफिसर ऑलवेज एन ऑफिसर और वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर आज भी आई फॉलो द सेम टाइम लाइन सुबह उसी टाइम उठते हैं एक्सरसाइज करते हैं काम करते हैं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शेक ऑफ दैट हैबिट
1: जिस तरह से इंटर मिलिट्री अकेडमी में अंतिम पग उसको पार कर यानी कि उस अंतिम क्षण तक ट्रेनिंग का प्राप्त कर फिर अपनी सर्विसेज देना और फिर अंतिम सांस तक सिर्फ भारतीय सेना के साथ जुड़े रहना, इसके बीच का जो समय है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंतिम सांस तक जो व्यक्ति सोच लेता है कि मैं तो भारतीय सेना को ही समर्पित हूँ, उसके लिए ये डिसीजन लेना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है निश्चित रूप से। लेकिन मैं जानना चाहूँगी व्हाट आर प्री मैच्योर रिटायरमेंट्स, अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो।
0: ओके, सो प्री मैच्योर रिटायरमेंट बाय द जो नाम जैसे सजेस्ट करता है, इट इज़ रिटायरमेंट applying for retirement or taking retirement before your mandatory service period or your mandatory bond period has expired. Permanent commissioned officers के लिए 20 साल minimum requirement है, उसी प्रकार soldiers के लिए अलग अलग rank पे time निर्धारित है. So sometimes because of personal reasons bade sari it's a life of sacrifice, and sometimes because of various compulsions or personal reasons a man is forced to break away from the organization or go away from the organization, which is a very difficult time. So you apply, and if the organization agrees on the justification कि हाँ आपकी बात में मेरिट है, दे विल लेट यू गो बिफोर योर मैंडेटरी टाइम. सो दैट इज व्हाट प्रीमैच्योर रिटायरमेंट इज.
1: जी, बहुत सारे हमारे पास यहाँ संदेश आए हैं एंड आपको बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत मैसेजेस के जरिए अपना प्यार अब तक बरसा रहे हैं. यहाँ पर अनिल कुमार हैं जिन्होंने संदेश भेजा है उत्तराखंड से, और इन्होंने आपको नमस्कार कहा है, विश्वकर्मा पूजा की कुछ शुभकामनाएं दी हैं. बिल्कुल, एक ऑफिसर को जिसने आर्म फोर्सेज में अपना दमखम साबित किया अपने कार्यकाल में, उसको विश्वकर्मा पूजा का बिल्कुल मतलब पता है, क्योंकि उसके लिए सारे अस्त्र शस्त्र सारी मशीनरी ही है जो जिससे उसे सशक्तिकरण महसूस हुआ है. तो विवेक सर, देश की सेवा के लिए आप जो कर रहे हैं, तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है. जय हिंद, जय भारत. तो आज भी जब इस तरह के संदेश मिलते हैं, यू आर द हीरो, द रियल हीरो, हम यही कहेंगे कि रिटायरमेंट के बाद भी आपको लोग इतना प्यार करते हैं, काबिले तारीफ है. संदेश यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आया है, सबलपुर से नाम चारुण है इनका, जय हिंद इन्होंने लिखकर भेजा है. पंकज का अमरावती से आया है संदेश, कहते हैं कर्नल विवेक चौहान रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर, जिसे बातचीत बढ़िया लगी है और आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, और ऑपरेशन विजय में शहीद हुए सभी सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि. और आकाशवाणी एफएम रेनबो के माध्यम से तो हम नित्य प्रति सभी सोल्जर्स को, ऑफिसर्स को नमन कहते हैं कि आपकी कर्तव्य निष्ठा हमारे लिए सर्वोपरि है. अगला संदेश यशवंत का आया है महाराष्ट्र से, और ये भी आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपका हम धन्यवाद करना चाहते हैं यशवंत. संदेश हमारे पास आया है तमिलनाडु से, शूरवीर सेना नायक अधिकारी को मेरा प्रणाम, जय हिंद विजय कुमार वी का संदेश है, और जिन कठिन परिस्थितियों में हमारे जवान, हमारे सैन्य अधिकारी काम करते हैं, अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं हमारे ये दोस्त. जय हिंद लिखकर भेजा है दीपांशु ने भटिंडा से, जहां आप पहली बार एज अ कमीशन ऑफिसर तैनात हुए थे. तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, एक एफिनिटी हो जाती है, जैसे कि जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी का नाम सुनते ही मेरी आपके साथ हो गई, सर ऑफिसर के साथ हो जाती है जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होता है. अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके माता पिता इंडियन आर्म फोर्सेस, और अब आपका परिवार जिसमें खास तौर पर आपकी स्पाउस आपकी बेटर हाफ है, आपको ऑफिसर बनाने में आपके माता पिता का आर्मी का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन करने में आपकी बेटर हाफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, आपके पीछे आपका घर बखूबी वैसा ही चल रहा होगा जैसे आप उसे छोड़कर आते होंगे जब अलग अलग पोस्टिंग्स के लिए अकेले जाते होंगे, तो क्या कहना चाहते हैं?
0: सो आई हैव द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर जो वाइव्स हैं हमारे सोल्जर्स की, हमारे ऑफिसर्स की, बिकॉज यू नो इट इज़ उनकी सपोर्ट के बगैर आप ठीक से काम नहीं कर सकते. अगर आपके घर के घर से पीस है, आपकी वाइफ जो है आपके डिसीजन सपोर्ट करते हैं, कभी डिफिकल्ट डिसीजन होते हैं, कभी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, फैमिली को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास काम है, आपको रिस्क लेना है. So that is a sacrifice for the family, and I have absolute respect for the ladies, for the wives of all our soldiers who let them go, who gladly let them go to their field postings for their deployments, for their trainings, बिना रोध हो के, बिना रकस क्रिएट करे हुए,
1: बिना
0: कंप्लेंट्स करे हुए, और उनकी एब्सेंस में अकेले घर संभालना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को देखभाल करना, पेरेंट्स को देखभाल करना, सोशल एंगेजमेंट जो है उनको सिंगल हैंडेडली हैंडल करना, दैट इज़ अ क्रेडिट टू द लेडीज़, टू

0: to all of them and I have absolute respect for them.
1: तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी कमांडिंग ऑफिसर रही हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, घर के दरवाजे के अंदर घुसते ही आप जो है अपना रैंक जो है दूसरे अपनी स्पाउस को पहना दीजिए और सैल्यूट कर दीजिए।
1: वाह क्या बात है। तो ऑल दी आर्मी ऑफिसर्स हु आर लिसनिंग टू अस, जितने भी सुन रहे हैं रिटायर भी हो चुके होंगे तो शायद आपकी बात से वाकिफ होंगे कि सच में ऐसा ही होता है और शायद एक घर चलाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस बात को सिविलियंस को भी अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। सो मैं यही कहना चाहूंगी कर्नल विवेक चौहान, यू आर नॉट रिटायर्ड, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं क्योंकि जैसे आपने कहा कि आप समय समय पर अलग अलग कार्य करते हैं क्योंकि आपका मानना है कि एक ही जिंदगी है, बाद में जीवन में रिग्रेट्स ना हो इसके लिए जरूरी है कि जो मिलता जाए या जो आप अपनाना चाहते हैं पाना चाहते हैं उसे पा लीजिए। हमारे यूथ जो है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
0: मैं यूथ को सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, यू नो प्लीज बी प्राउड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस बिकॉज they do sacrifice a lot on your behalf and they feel proud of the fact that whatever they do it for the future of our country and for the people of this country. So support them, be proud of them and that is how you can thank them for their services.
1: जी बहुत खूब, बहुत ही प्यारी बात और बहुत ही प्यारा संदेश। और अब जो नगमा मैं यहाँ प्ले करने वाली हूँ निश्चित रूप से उन सभी वाइफ्स के लिए है जो जिनका संबंध आर्मी से है, आर्म फोर्सेस से है, आर्म फोर्स पर्सनल से, वो उनकी अर्धांगिनी है, स्पाउस हैं। तो हमारी ओर से आपको, आपके लिए ये गाना और एक बार फिर से हम धन्यवाद करना चाहते हैं कर्नल विवेक चौहान का जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, पर जैसा कि उन्होंने खुद कहा वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, क्योंकि ऑफिसर जिंदा दिली के साथ जीना चाहता है और दूसरों की जिंदगी को आसान बनाना चाहता है। तो मैं गीतिका आपसे लेती हूँ इजाजत, होगी आपसे फिर मुलाकात।

सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे राहिल। 5:05 हो रहे हैं 107.1 एफएम पर, एक्सक्लूसिवली आप मुझे सुन रहे हैं एंड आप सभी का वेलकम करना चाहता हूं इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है लव यू जिंदगी। ऑफ कोर्स शाम के इस वक्त में आप या तो ऑफिस से घर जा रहे होंगे, ऑफिस में होंगे या घर पे होंगे या अभी अभी उठे होंगे शायद ऑफिस जाने के लिए, या आज शायद छुट्टी होगी, इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर होगी, या फिर शायद अपने मनपसंद शख्स के साथ थोड़ी सी नोकझोंक हो गई तो उनको मनाने की तैयारी करें। बट देन मैं यहाँ पे हूँ और आप सभी के साथ लेकर आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा शो जहाँ पर डेफिनेटली 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8 कुछ बहुत ही अलग होगा, कुछ नया होगा आप सभी के लिए एक्सक्लूसिवली 107.1 एफएम पर। यह चल रहा है शो जिसका नाम है लव यू जिंदगी। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे राहिल। वेलकम करना चाहता हूं सारे ही हमारे श्रोताओं का, सारे ही हमारे लिसनर्स का। थैंक यू सो मच फॉर बींग अ पार्ट ऑफ अस। फिलहाल दोस्तों 5:06 हो रहे हैं एंड यस, ये खूबसूरत सा गाना लव यू जिंदगी हम सुन रहे थे फ्रॉम द फिल्म डियर जिंदगी। आज ना थोड़ा सा पार्टी वाला माहौल है यहाँ पर हमारे ऑफिस में भी, एंड आई थिंक ओवरऑल पार्टी होनी चाहिए। एंड देन शाम के इस वक्त पर जहाँ पर शायद लोग घर जा रहे हैं या ऑफिसेज जा रहे हैं, मूड थोड़ा सा ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और एनर्जेटिक होना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स 5 से 6 के इस स्लॉट में थोड़ा सा हम पंप अप म्यूजिक प्ले करने वाले हैं 5 से 6, एंड देन 6 से 7 होगा अंदाज़े बयां जहां पे हम सुनाएंगे ढेर सारी शेर व शायरियाँ भी, एंड ऑफ कोर्स कुछ बहुत ही खूबसूरत सूफी गाने आप सभी को। बट फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना आप सभी के लिए, विच आई एम श्योर आपको जरूर मजा आएगा। ये गाना ही नहीं बल्कि आई थिंक मूवी ही बहुत ही खूबसूरत थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म से ये गाना, फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन एंड अभय देओल की आवाज में। सुनते रहिए 107.1 FM, रेनबो म्यूजिकली योर्स।

वो लम्हे फिल्म से केकी की आवाज में एक खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए प्ले हो रहा था। अगले गाने की बारी आ गई है वाजिद की आवाज में, बहुत ही खूबसूरत गाना इज कमिंग योर वे अगेन। दिस इज द रीमिक्स आवर 107.1 एफएम पर ये चल रहा है शो जिसका नाम है लव यू जिंदगी, और ये रीमिक्स आवर में अगली आवाज वाजिद साहब की फ्रॉम द फिल्म तेरी मेरी कहानी। सुनते रहिए 107.1 एफएम रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

खूबसूरत सा शो जिसका नाम है लव यू जिंदगी। फिलहाल चल रहा है रीमिक्स आवर, जहां पे हम बॉलीवुड के ही गाने जो रीमिक्स्ड है, रीमिक्स्ड वर्जन्स आपके ही पसंद के, वो प्ले कर रहे हैं। बात रही आपकी पसंद की, तो बाय द वे बता दूं कि आधे घंटे और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इस तरीके के गाने प्ले होने वाले हैं। उसके बाद 6 से 7 होने वाला है शो जिसका नाम है अंदाज़े बयां, जहां पे कुछ गज़लें, कुछ गैर फिल्मी सॉन्ग्स एंड आल्सो सूफी गाने आप सभी के लिए आने वाले हैं। एंड देन आखिर में यानी कि 7 से 8 होगा रिक्वेस्ट आवर, आप और मैं मिलकर शो को आगे बढ़ाएंगे। तो ज़रूर अपनी रिक्वेस्ट आप अब भेज सकते हैं, जरूर भेजिए ऑन 8657661071। ओके, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा आहिस्ते स्लो स्पीड में आपको नंबर बताता हूँ। अपने फोन्स निकालिए, अपने अपनी अपनी जो रिक्वेस्ट्स हैं वो जरूर मुझे भेज दीजिए। नंबर है 8657661071 और कनेक्ट करें और मुझे बताएं कि आप क्या सुनना चाहते हैं। फिलहाल इस रीमिक्स आवर में अगली आवाज आप सभी के लिए KK एंड पलक मुंचाल की, बहुत ही अमेजिंग गाना, आई एम श्योर आपको जरूर पसंद आएगा। सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर।

तो इस रीमिक्स वाले सेगमेंट में कुछ और मसालेदार ऐड करते हैं, या अगर मैं नॉर्मली कहूँ तो एक तड़का ऐड करते हैं, एंड आई थिंक अगर पंजाबी तड़का ऐड कर दिया तो फिर बात ही अलग होगी. सो हियर आई हैव सम वेरी ब्यूटीफुल पंजाबी, एक्चुअली पंजाबी वर्ड्स यूज करे हुए सॉन्ग्स हैं जो बॉलीवुड में बहुत सारे गानों में आपने, बहुत सारे मूवीज में रादर आपने देखे होंगे. सो हियर इट इज. सबसे पहली आवाज मेकअप आजी की, सुनते रहिए 107.1 FM. हियर इज द पंजाबी तड़का एक्सक्लूसिवली 107.1 FM पर.

बाचान बेनी दयाल की आवाज में लेट्स नाचो, ये गाना हम सुन रहे हैं 107.1 FM पर। बाय द वे आप सभी को बता दूं कि बस दो गाने और हम प्ले करने वाले हैं, शायद तीन वक्त के हिसाब से इस आवर में। उसके बाद ऑफ कोर्स आप सुनेंगे न्यूज एंड देन अंदाजे बयां शो शुरू हो जाएगा, फॉलोड बाय आपका अपना फेवरेट रिक्वेस्ट आवर यानी कि हम तुम। तो अपनी रिक्वेस्ट्स देने के लिए जरूर मुझ तक पहुंचे, 8657661071 नंबर है, कनेक्ट करें, मुझे बताएं कि आप क्या सुनना चाहते हैं। फिलहाल इट्स अ ब्यूटिफुल सनी डे, आज लग रहा है कि सिर्फ बारिश ही नहीं बट इट्स अ ब्यूटिफुल मौसम बिकॉज द मौसम इज सुपर ऑसम। अगला गाना सनी सनी यो यो हनी सिंह एंड नेहा कक्कर की आवाज में फ्रॉम द फिल्म यारिया 2। सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

एंड वेलकम बैक। 6:26 हो रहे हैं 107.1 एफएम पर आप मुझे सुन रहे हैं यानी कि आरजे राहिल को। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग शो चल रहा है जिसका नाम है अंदाज़े बयां। ऑफ कोर्स मैं लगभग डेढ़ घंटे से आपके साथ हूँ। 5 से 6 हमने कुछ बहुत ही अमेजिंग गाने प्ले किए जिसमें ऑफ कोर्स रीमिक्स सॉन्ग्स भी थे एंड देन टुवर्ड्स द एंड यू नो वी डिड पंजाबी तड़का, जहाँ पे बॉलीवुड में पंजाबी सॉन्ग्स जो प्ले हुए हैं उसमें से कुछ गाने हमने प्ले किया एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं दैट क्या अब हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। दोस्तों बताना चाहता हूँ बिल्कुल भेज सकते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स लगभग 30 मिनट बचे हैं ये शो इस आवर को ख़त्म होने में यानी कि अंदाज़े बयां प्रोग्राम को ख़त्म होने में एंड देन आफ्टर दैट 7 to 8 इज़ गोइंग टू बी योर शो, यानी कि आप और हम मिलकर इस शो को आगे बढ़ाएंगे। 7 to 8 जिसका नाम है हम तुम होता है लिसनर्स चॉइस आवर, जहां पे आपकी ही पसंद के गाने हम प्ले करते हैं। तो स्लॉट्स फुल हो रहे हैं, जरूर मुझे आप अपनी रिक्वेस्ट्स भेज सकते हैं। नंबर में एक बार रिपीट कर रहा हूं 8657661071। इस अंदाज़े बयां शो में कुछ बहुत ही खूबसूरत सूफी गाने में आप सभी को सुना रहा हूँ, गैर फिल्मी सॉन्ग्स, कवालीज एंड गजल्स एटसेट्रा। तो सुनते रहिए, बने रहिए, 23 मिनट और हैं हमारे पास जो हम प्ले करेंगे इस आवर में पर्टिकुलरली एंड देन लास्ट 10 मिनट्स इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी स्पेशल। सो स्टे ट्यून एवरीबॉडी, यू गाइज आर ट्यून इन टू द सिटीज बेस्ट रेडियो स्टेशन 107.1 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे राहिल। अब बारी आती है उस गाने को प्ले करने की जिसकी गैर मौजूदगी से मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली अंदाज़े बयां शो अधूरा है। एब्सोल्युटली कुन फया कुन बाय एआर रहमान साहब, जावेद अली एंड मोहित चौहान। सुनते रहिए 107.1 एफएम रेनबो विथ मी आरजे राहिल।

आई थिंक रॉकस्टार फिल्म से पर्टिकुलरली ये गाना, आई थिंक सारे ही गाने बहुत ही अमेजिंग रहे हैं, बट देन इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, ये वो गाना है डेफिनेटली आई थिंक जो आज से 5 साल 10 साल 2-3 decades बाद भी शायद टॉप 10 गानों की अगर लिस्ट निकाली जाएगी जो पिछले 30-40 साल पुरानी

होगी, तो डेफिनेटली इस गाने का शुमार इस गाने की प्रेजेंस जरूर होगी। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आई थिंक रहमान साहब, जावेद अली एंड मोहित चौहान जी ने इस गाने को बहुत ही खूबसूरती से गाया है। जिस तरीके से कंपोज किया है रहमान साहब ने, वो भी बहुत ही अमेजिंग है। पिक्चराइजेशन हमने देखी है, मूवी आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने देखी है। जिन्होंने नहीं देखी, मैं उनसे अर्ज करता हूँ कि आप ज़रूर रॉकस्टार एक बार ज़रूर देखें, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है आप रिलेट कर पाएंगे उस कैरेक्टर से। एनीवेज, फिलहाल चल रहा है ये शो जिसका नाम है अंदाज़े बयां। मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे राहिल। इट्स 6:37 ऑन द क्लॉक। फिलहाल कुछ गाने और मैं प्ले करने वाला हूँ अगेन इसी वाइब के अराउंड, एंड देन वो आवर शुरू हो जाएगा जिसका आप सब बेसब्री से इंतज़ार करें, यानी कि 7 से 8 बजे न्यूज़ ऑफ कोर्स आप सुनेंगे, 7 से 7:10। सो टू बी प्रिसाइज 7:10 से लेकर 8 बजे तक ये रिक्वेस्ट आवर रहने वाला है। आपके ही मनपसंद गाने मैं प्ले करूंगा। स्लॉट्स लगभग फिल हो चुके हैं। आई थिंक एक तो गाने शायद हम और अकोमोडेट कर सकते हैं। इनकेस अगर आपके जहन में कोई गाना है तो ज़रूर आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। मैं नंबर दे रहा हूं, नोट कर लें, 8657661071 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अपनी रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं, आपका नाम और आप किस शहर से ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और कौन सा गाना, वो ज़रूर मैंशन कर दें। बिकॉज ऑफ कोर्स न्यूज़ ऑन एयर ऐप के जरिए आप हमें कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप न्यूज़ ऑन एयर ऐप डाउनलोड करें, वहां पे रेडियो आइकॉन पे क्लिक करके सर्च बार में टाइप करें FM रेनबो मुंबई और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कहीं भी और कभी भी। कहीं पर भी जाएं, ये बस एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जो आई एम श्योर मिल ही जाता है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बट फिलहाल इसी वाइब को कंटिन्यू करते हुए हम प्ले कर रहे हैं अगला सॉन्ग जावेद अली एंड कैलाश खेर साहब की आवाज में। बहुत ही खूबसूरत गाना है ये, फ्रॉम द फिल्म दिल्ली 6। प्रसून जोशी साहब ने इस गाने को लिखा, AR रहमान साहब ने इस गाने को कंपोज किया। गाने का नाम अर्जियां। सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो। ये चल रहा है सूफी आवर एक्सक्लूसिवली ऑन 107.1 FM।

तो उनमें से ये गाना भी था जो जावेद अली एंड कैलाश खेर साहब की आवाज में अभी आप सुन रहे थे, अर्जियां फ्रॉम द फिल्म दिल्ली 6। इस गाने की फरमाइश, इस गाने की रिक्वेस्ट की थी मिस्टर सचित मूर्ति ने, जो हमें मुंबई से सुन रहे हैं एंड उन्होंने अपने बारे में बताया, हु इज एन अमेजिंग वॉइस आर्टिस्ट और मुंबई से फिलहाल उन्होंने हमें मैसेज किया। थैंक यू सो मच सचित फॉर रिक्वेस्टिंग एंड आई होप दैट आपको गाना सुन के जरूर मजा आया होगा। बट फिलहाल आप सभी को बताना चाहता हूँ, इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू लिसन टू प्लीज लेट मी नो। अभी भी जैसे मैंने कहा, दो स्लॉट्स अभी भी बचे हैं, वी आर लुकिंग फॉर दोज टू वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग्स। ये बात एक चीज समझिए कि मूड को समझ कर और ओवरऑल प्रोग्राम को समझ कर, शो को समझ कर ही आप अपनी रिक्वेस्ट्स भेजें। मैं जेन्युइनली एक चीज़ आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप सूफी आवर में फॉर एग्जांपल अगर आप नॉन सूफी गाना देते हैं, भले चाहे वो फिर आपकी फरमाइश है, बट इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू प्ले। सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दैट कि जो आखिरी आवर है वो मिक्स्ड आवर है और उस मूड को, उस ओवरऑल जॉनर को समझ के आप जरूर अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाएं। 8657661071। फिलहाल अगले 12 मिनट में दो बहुत ही खूबसूरत गाने आप सभी के सामने आ रहे हैं, आई एम श्योर आपको जरूर पसंद आएंगे। बाय द वे, ये चल रहा है शो जिसका नाम है अंदाज़े बयां, और आप जानते हैं कि हम इसमें सिर्फ फिल्मी गाने नहीं बल्कि गैर फिल्मी गाने और गज़लें भी प्ले करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल है, और जब गज़लों की बात आती है तो उस्ताद मेहदी हसन खां साहब का नाम डेफिनेटली हमेशा आता है, और उन्हीं की एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल है जिसका नाम है गुलों में रंग भरे, और उनकी आवाज़ में नहीं बल्कि मैं आपको यही गज़ल अरिजीत सिंह साहब की आवाज़ में सुनाना चाहता हूँ, जिसको यूज़ किया था इस फिल्म में जिसका नाम है हैदर। फैज़ अहमद फैज साहब ने इस गाने को लिखा था, इस कलाम को, एंड विशाल भारद्वाज जी ने इस गाने को कंपोज किया है, गज़ल को रादर। तो ज़रूर सुनिए एंड एंजॉय कीजिए। इसके बाद एक और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आ रही है आप सभी के लिए, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू 107.1 FM। मैं हूँ आपके साथ आपका अपना RJ राहिल।

वेलकम बैक दोस्तों, इट्स 6:47 ऑन द क्लॉक 107.1 FM पर आप मुझे सुन रहे हैं यानी कि आरजे राहिल को। बाय द वे मैं तो कहूंगा द रिक्वेस्ट आवर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, इसीलिए बिकॉज हमने जो शॉर्टलिस्ट किए हैं बहुत सारे गाने एज पर द चॉइस ऑफ प्रेफरेंस एंड ऑल्सो जिन लोगों ने वक्त पे हमें मैसेजेस किए हैं।

जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में एक और बहुत ही खूबसूरत गाना जो आप सभी के लिए प्ले करना चाहता हूँ, जॉगर्स पार्क फिल्म से, आप सभी के लिए एक्सक्लूसिवली 107.1 FM पर।

आतिफ असलम की आवाज हो, पहली नजर में गाना हो और एफएम रेनबो की फ्रीक्वेंसी 107.1 एफएम हो तो चार चांद लगे जाने हैं। एंड हाँ, नॉट टू फॉरगेट आरजे राहिल ऑनलाइन हो। बट फिलहाल आप सभी को बहुत ही खूबसूरत गाने सुना रहा हूँ। थैंक यू सो मच बाय द वे टू रेखा जी जो हमें मुंबई से सुन रही हैं फॉर दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग सजेशन। और डेफिनेटली हमने ये प्ले किया, ये रिक्वेस्ट आवर चल रहा है दोस्तों, आपकी ही फरमाइश की बहुत सारे गाने अब आप सुनेंगे, जिसमें एक उसूल है इस आवर का, जहाँ पे गाने ज़्यादा बातें कम। अगली आवाज़ आतिफ असलम साहब की, तू जाने ना, सुनते रहिए 107.1 FM।

राहत फतेह अली खान, शंकर महादेवन एंड ऋचा शर्मा की आवाज में सजदा, हम ये गाना सुन रहे थे माय नेम इज़ खान फिल्म से। निरंजन अयंगर जी ने इस गाने को लिखा है, शंकर एहसान लॉय साहब की बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन। फिलहाल दोस्तों इट्स 7:30 ऑन द क्लॉक, अगले 30 मिनट आपके ही पसंद के कुछ बहुत ही अमेजिंग गाने आ रहे हैं आप सभी के लिए। अगली आवाज अरिजीत सिंह की।

राहत फतेह अली खान, सुनिधि चौहान एंड सुजैन डिमेलो ने इस बहुत ही खूबसूरत गाने को गाया, सुरीली अखियों वाले, फ्रॉम द फिल्म वीर। गुलजार साहब के लिरिक्स एंड साजिद वाजिद साहब की बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन। बाय द वे दोस्तों, अगले 16 मिनट में आई थिंक लगभग तीन गाने और प्ले होने वाले हैं, और इन तीन गानों में से जो अगली फरमाइश आई है वो आई है ऑल द वे फ्रॉम विरार बाय मिस्टर सचित मूर्ति, जो हमें सुन रहे हैं विरार से। और ये रिक्वेस्ट बहुत ही ख़ास है, उनके जितने भी जानने वाले हैं और नहीं भी जानने वाले हैं, सारे लोग विरार के, उनके लिए डेडिकेटेड टू ऑल द पीपल हु लिव इन विरार। सो दिस वन गोज फॉर यू सचित। ये गाना है फ्रॉम अ वेरी ब्यूटिफुल फिल्म कॉल्ड एज भाग मिल्खा भाग। प्रसून जोशी साहब ने इस गाने को लिखा, शंकर एहसान लॉय जी ने इस गाने को कंपोज किया। गाने का नाम मस्तों का झुंड। मस्त रहना चाहिए, मस्ती करते रहना चाहिए, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट द लाइफ इज अबाउट। गाना शुरू में ही इतना मस्ती वाला, आई एम श्योर ओवरऑल तो बहुत मजा आने वाला है। सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो विथ मी आरजे राहिल।

वेलकम बैक दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ जो कि है एक स्पेशल प्रोग्राम आप सुनने वाले हैं, एक स्पेशल शो 8 बजे शार्प शुरू हो जाएगा, 8 से 8:30, जिसका नाम है चीयर भारत, जो है 20th एडिशन एशियन गेम्स के 2026 जो जापान में होने वाले हैं, तो उसके बारे में ये शो होगा जिसका नाम है चीयर भारत, जो 8 बजे से 8:30 बजे तक होगा। सो मेक श्योर कि आप वो शो जरूर सुने। बट फिलहाल दो गाने आप सभी के लिए आ रहे हैं एक्सक्लूसिवली 107.1 FM पर, और आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग शो। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 मैं आपके साथ था, एंड फिलहाल आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आई होप यू गाइस हैड अ ग्रेट टाइम। दिस इज RJ राहिल साइनिंग ऑफ। बाय द वे, दो गाने आप सभी के लिए। पहला गाना इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम नवी मुंबई, अरिजीत सिंह एंड अंतरा मित्रा की आवाज में, फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल फिल्म कॉल्ड एज अजर। गाने का नाम इतनी सी बात है। इस गाने की रिक्वेस्ट की है मिस जन्नतुल फिरदौस ने, जो हमें सुन रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। और उसके बाद एक और गाना आप सुनेंगे राहत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में, तू ना जाने आसपास है खुदा, फ्रॉम द फिल्म अनजाना अनजाने, विशाल दादलानी जी के लिरिक्स एंड विशाल एंड शेखर की बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन। राकेश जी फ्रॉम दादर ने इस गाने की रिक्वेस्ट की है। सो या, दीज टू सॉन्ग्स आर कमिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच डियर लिसनर्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। आई होप यू गाइस हैड अ गुड टाइम। उम्मीद है बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर, सी यू सून।

0: एक मैदान, एक ट्रैक, एक कोर्ट, एक मैट और करोड़ों दिलों की धड़कन। जब तिरंगा एशिया के सबसे बड़े खेल मंच पर लहराता है तो मुकाबला सिर्फ पदक का नहीं होता, मुकाबला होता है हौसले का, तैयारी का और उस विश्वास का जो एक खिलाड़ी के कदमों से निकलकर पूरे देश तक पहुंचता है। आईटी नागोया बनेगा एशिया के खेल ऊर्जा का केंद्र और भारत एक बार फिर तैयार है पिछले एशियन गेम्स में 107 पदकों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। अब बारी है उस प्रदर्शन को आगे ले जाने की। इस बार ट्रैक पर रफ्तार होगी, क्रिकेट में चौके छक्कों की गूंज होगी, हॉकी में स्टिक और गोल के बीच जंग होगी, कबड्डी के मैट पर सांसें थमेंगी, बैडमिंटन में हर स्मैश उम्मीद जगाएगा, वेटलिफ्टिंग में हर किलो ताकत की कहानी लिखेगा और टेबल टेनिस की छोटी सी गेंद पर भारत की बड़ी उम्मीदें टिकी होंगी। ये है एशियन गेम्स 2026 पर विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत। आकाशवाणी पर एशियन गेम्स स्पेशल सीरीज में आज बात होगी उन खेलों की जहां भारत के पास पिछली कामयाबी का अनुभव और इस बार है नए चैंपियन का जुनून। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज के इस आधे घंटे के विशेष एपिसोड में हम जिन खेलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे उनमें एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग और टेबल टेनिस प्रमुख हैं। हम जानेंगे कि पिछले एशियन गेम्स में इन खेलों में हमारी क्या स्थिति थी, हमने कौन से पदक जीते थे और इस बार किन दिग्गजों और युवा सितारों से देश को उम्मीदें हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो बेहद खास मेहमान, जानी मानी खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मीडिया सलाहकार सायंतन मोइत्रो। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
2: थैंक यू सो मच।
0: शुरुआत करते हैं खेलों की रानी कहे जाने वाले एथलेटिक्स से। पिछले एशियन गेम्स में भारत का एथलेटिक्स में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था जहां हमने 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य मिलाकर कुल 29 पदक अपने नाम किए थे। मोना, आपके साथ शुरुआत करते हैं। नीरज चोपड़ा इस बार नहीं है, पिछले बार स्वर्ण पदक उनके नाम था। पारुल चौधरी की ऐतिहासिक दौड़ थी, तेजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉटपुट में गोल्ड जीता और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम का भी रिकॉर्ड प्रदर्शन था। नीरज के ना होने से आकर्षण थोड़ा फीका जरूर हुआ है, लेकिन किन खिलाड़ियों को आप मानती हैं कि यहाँ से पदक आ सकता है?
1: बिल्कुल, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में एक ऐसा नाम बन चुके हैं कि जब वो मैदान पर उतरते हैं तो लगता है कि एशियाई खेलों में तो स्वर्ण पक्का माना जा रहा था और लगातार उनके प्रदर्शन में जो निरंतरता रही है और एक जो स्टार्डम है उनका, तो एक आम आदमी के मन में भी रहता है कि अच्छा नीरज चोपड़ा का मुकाबला कब है। देर रात दोहा डायमंड लीग या बाहर जब भी वो खेलते हैं देर रात रात तक लोग जागकर उनके मुकाबले देखते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो एथलेटिक्स का जो सबसे बड़ा स्टार है वो नहीं है, लेकिन भारतीय एथलेटिक्स दल काफी बड़ा है 74 खिलाड़ियों का, और जिसमें अविनाश साबले हो या पारुल चौधरी हो या तेजिंदर पाल सिंह तूर हो जिनके आपने नाम लिए, वो डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर जा रहे हैं और एक बार फिर उम्मीद उनसे होगी कि वो स्वर्ण पदक जीतकर उस पदक को बरकरार रखकर लौटें। जैसे अविनाश साबले हैं, स्टीपल चेस में हमारे बहुत बड़ी पदक उम्मीद है, पारुल चौधरी है 5000 मीटर में गोल्ड जीता था, 3000 में रजत पदक जीता था, इस बार भी वो 1500, 3000 और 5000 में उतरेंगी तो उनसे उम्मीद होगी कि वो जहां उन्होंने गोल्ड जीता है उसे बरकरार रखें और दूसरा पदक का रंग बेहतर करें। जेवलिन में नीरज की गैर मौजूदगी में यशवीर होंगे और रोहित यादव होंगे जिनसे भी उम्मीद होगी, क्योंकि जेवलिन भारत में एक फिनोमेना बन चुका है, तो उम्मीद होगी कि वो नीरज से प्रेरणा लेकर कम से कम पोडियम पर खड़े हो सके। पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम हमेशा भारत की मजबूत दावेदार रही है पदक की। ज्योति यारा जी वापसी कर रही है, राष्ट्रमंडल खेलों में वो भार रही थी, 110 मीटर बाधा दौड़ में उन पर भी नजरें होंगी। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर होंगे जिन्होंने 2023 में रजत पदक जीता था और ग्लासगो में भी वो रजत पदक जीत कर आए हैं। इनके अलावा गुरिंदर वीर है 100 मीटर और रिले टीम में भी वो है, अनिमेश कुजूर 100 मीटर 200 मीटर गुलवीर है जो पिछले कुछ अरसे से काफी अच्छा उनका लगातार प्रदर्शन रहा है, तो 1500, 5000 और 10000 मीटर में उन पर नजरें होंगी। प्रवीण चित्रावेल है जो त्रिकूद में भारत के पदक के दावेदार होंगे, डेकाथलन में तेजस्वी शंकर है और एनसी सोजन जो लॉन्ग जंप में है, तो काफी सारा स्टार पावर है भारत के पास और मुझे लगता है कि पिछले प्रदर्शन को अगर बेहतर नहीं कर सके तो दोहरा तो जरूर सकेंगे।
0: सायंथन, जब भी बात एथलेटिक्स की होती है तो चर्चा होती है कि किस तरीके की सुविधाएं खिलाड़ियों को मुहैया कराई जा रही हैं। हमने देखा कि एशियन गेम्स के पहले बहुत सारी सीरीज का आयोजन किया गया। चर्चा ये भी है कि एशियन गेम्स में रहने की व्यवस्था थोड़ी अलग है, तो पटियाला का जो साई सेंटर है वहां पर कुछ उस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए खिलाड़ियों के लिए ताकि उन्हें वहां जाकर कुछ नया अनुभव न हो, वो पहले से कंफर्टेबल हो सकें। थोड़ा जो भारत सरकार का खेल मंत्रालय है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, किस तरह की सुविधाएं प्रदान की पिछले कुछ समय में इस एशियन गेम्स को ध्यान में रखकर, उसके बारे में बताएं।
2: पहली बात तो देखिए, आपने पटियाले के जिक्र की, पटियाला के साथ बैंगलोर भी हम लोग शिपिंग कंटेनर्स जो है जो जापान के आइची नगोया में होने वाले जहाँ पे एथलीट्स के एकोमोडेशन होंगे, तो उसका व्यवस्था, उसका एक्लमेटाइज करने के लिए खेल मंत्रालय ने पहले से सोच के रखा था। और जब शिपिंग कंटेनर्स की बात किया जाएगा, छोटे से सबको लगता है कि क्लॉस्ट्रोफ्रोबिक है, सफोकेट होंगे, ये होंगे, छोटे से रूम है तो। लेकिन बात यह है कि हमारे सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एथलीट जो है हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, वो है तजिंदर पाल तूर जी। लेकिन 40x8 जो हमने बेड्स बनाए, उन्होंने बताया कि मेरे को ये हॉस्टल के दिन याद आ जाते हैं। ये जो एडजस्टमेंट का, एक्लमेटाइज करने का ये व्यवस्था लिया गया खेल मंत्रालय से, ये उनको वहां जाकर कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर, कोई फिजिकल प्रेशर ना अपनाना पड़े, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। एंड एथलीट्स आर वेरी हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। तो बेसिकली ये हमें और भी वो आगे जाने वाले जो प्रेशर होने वाले उससे काफी बचा रहा है।
0: मुना, आपने कई खिलाड़ियों की चर्चा की एथलेटिक्स में, ट्रैक एंड फील्ड की, जिनसे काफी उम्मीद है। सर्वेश कुशारी भी एक एथलीट है जो हाई जंप में है, कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीत कर आए हैं। हैमर थ्रो में अगर बात करें तो तानिया चौधरी हैं, जिन्होंने एशियन गेम्स से ठीक पहले 68.35 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। कुछ बड़े नामों के अलावा कुछ उन नामों के बारे में भी बताइए जिनसे उम्मीदें हैं और जो छुपा रुस्तम भी साबित हो सकते हैं।
1: देखिए, सबसे जैसे सायंतन ने अभी बताया कि जिस तरीके से खिलाड़ियों का पूल निकल कर आ रहा है, हर एक टूर्नामेंट में एक नया पूल हमारे सामने आता है और उसके लिए खेलो इंडिया से जो हमारे एथलीट्स निकल कर आते हैं, तो मुझे लगता है कि इन एशियाई खेलों में भी जो जाने माने नाम है उनके अलावा कई नए खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे, कई नए पदक विजेता हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि दो दिन पहले ही जो टॉप्स के सीईओ हैं एनएस जोहल, वो बता रहे थे कि जो हमारा कंटिंजेंट है उसमें मैक्सिमम जो है वो डेब्यूटेंट्स हैं इन खेलों में। 500 का जो दल है उसमें 300 खिलाड़ी डेब्यूटेंट्स हैं वर्ल्ड कप पे। तो आप इससे खुद अंदाज लगा सकते हैं कि एशियाई खेलों में इस बार हमें नए पदक विजेता मिलने जा रहे हैं।
0: जी हाँ, जिसमें शैली सिंह से भी लॉन्ग जंप में उम्मीद होगी। मोहम्मद अफजल 800 मीटर में भारत की चुनौती पेश करेंगे। पैदल चाल में प्रियंका गोस्वामी एक बार फिर सबके उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगी। साथ ही साथ एनसी सोजन की भी आपने चर्चा की। जब साई इस तरीके के इवेंट में खिलाड़ियों पर नजर रखता है और आप काफी करीब से हैं, देख रहे हैं इन चीजों को, आपको क्या लगता है कि ट्रैक और फील्ड में वो टॉप 5 एथलीट्स कौन हैं जो जरूर पोडियम फिनिश कर सकते हैं अगर उनका दिन बेहतर

0: रहा तो।
1: देखिए, नीरज चोपड़ा सबसे बड़े सुपरस्टार है इंडियन एथलेटिक्स के, बट उनके ना होने के बावजूद भी रोहित यादव और यशवीर सिंह जो हमारे एक वाइल्ड कार्ड रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में, और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नीरज चोपड़ा के साथ भी कोई एक भारतीय पोडियम पे चढ़ेंगे, बट वो जो अनएक्सपेक्टेड था वो हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अभी अगर जैवलिन की बात किया जाए, अगर मैं जैवलिन पे फोकस करता हूँ, रोहित और यशवीर में से हम उम्मीद करेंगे कोई दो अगर आ जाए पोडियम पे तो भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। उसके साथ भी एंसी सोजन की बात आपने की थी, एंसी सोजन ने अभी हाल ही में अंजू बॉबी जॉर्ज की जो रिकॉर्ड है 6.83 मीटर की, उन्होंने 6.88 मीटर उन्होंने जंप किया। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अभी जो एंसी सोजन का कंसिस्टेंसी है, तो मेरे ख्याल से एशियन गेम्स में एट द टाइम, क्योंकि वो सिल्वर मेडलिस्ट ऑलरेडी है हंजाओ से, उसके बाद में मैं बोलना चाहूंगा पूजा सिंह के बारे में। पूजा सिंह का 1.93 जो पर्सनल बेस्ट है
0: हाई जंप में
1: 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स में थोड़ा सा चूक हो गए थे, जहां पे वो 8th आई है 1.77 मीटर। तो काफी लोग पूछ रहे थे क्या वो कॉम्पिटिशन का प्रेशर है, तो मेरे ख्याल से वो कंपटीशन का प्रेशर ना भी हो, क्योंकि अगर वो 6th आई है 1.80 के ऊपर, तो 1.93 अगर वो बेंचमार्क को क्वालिफाई करती है, प्रीटी श्योर शी विल बी अ मेडल प्रोबेबल इन आईची नगोया एशियन गेम्स।
0: तो उम्मीद करते हैं कि ट्रैक एंड फील्ड में भारतीय तिरंगा शान से लहराएगा। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब चर्चा देश की शान हॉकी की। 2023 में हमारी पुरुषों की हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को 5-1 से रौंद कर गोल्ड मेडल जीता था और ओलंपिक का टिकट भी कटाया था। वहीं हमारी महिला हॉकी टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए कांस्य पदक हासिल किया था। मुना, आप हॉकी वर्ल्ड कप अभी कवर करके आई हैं और बात पुरुष हॉकी से शुरू करते हैं। उम्मीदों के अनुसार प्रदर्शन नहीं रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि एशियन गेम्स में अगर टक्कर मिलेगी तो जापान से मिलेगी, कुछ हद तक मलेशिया को भी हम काउंट कर लेते हैं, किस तरह देखते हैं?
2: जी बिल्कुल, इस बार जब विश्व कप के लिए टीम गई थी तो लग रहा था कि 75 के बाद हम पहली बार पोडियम पे शायद खड़े होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर निराशाजनक प्रदर्शन रहा। खासकर गोलकीपिंग की अगर हम बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में लगा कि पीआर श्रीजेश की कमी कहीं ना कहीं टीम को खल रही है। तो एक ये ऐसा डिपार्टमेंट है, और डिफेंस जो आखिरी मिनटों में गोल गंवाना और फंबल करना, ये सब जो कमियां हैं वो भारतीय टीम ने काफी इस पर आत्ममंथन किया होगा। और यहाँ पर दारोमदार एक बार फिर रहेगा कि आप जो कोर ग्रुप है वो वही है, उसी को लेकर जा रहे हैं। तो जो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्शन और जो गोलकीपिंग में चूक हुई है उनसे यहाँ पार पाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ चुनौतियां उतनी कठिन है नहीं। विश्व कप में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के सामने आप खेल रहे थे, यहाँ पर आपसे हायर रैंकिंग वाली टीम कोई है नहीं। तो एशिया में चुनौती देने वाली जो टीमें हैं, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान हॉकी का क्या हाल है वो हम सब देख ही रहे हैं। मलेशिया का भी एक अच्छी टीम हुआ करती थी, लेकिन आज की मलेशिया टीम उस स्तर की नहीं है कि वो भारतीय टीम को चुनौती दे सके। जापान जरूर एक डार्क हॉर्स है, क्योंकि ये एशियाई खेल जापान में ही हो रहे हैं, और 2018 में हमें याद है किस तरीके से अप्रत्याशित रूप से जापान ने स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक क्वालिफाई भी किया था। तो हरमनप्रीत सिंह और मनप्रीत का भी मैं नाम लूंगी, सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा मैच भारत के लिए खेल चुके हैं, लेकिन जो वर्ल्ड कप में कमी नजर आई थी कि मिडफील्ड हमारा कहीं नजर ही नहीं आ रहा था, तो एक जो गैप्स मिडफील्ड में हो रहे हैं उनसे भारत को पार पाना होगा। और यहाँ जब हम लोअर रैंक टीम से खेलते हैं तो यहाँ पर कॉम्प्लिसेंसी से, आत्ममुग्धता से बचना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो यहाँ पर भारत को वर्ल्ड कप बीत गया, पीछे की बात है, उसको भुलाकर अब टारगेट जो है वो लॉस एंजलिस ओलंपिक है, उसको ध्यान में रखकर, क्योंकि हर टीम को चाहिए कि ओलंपिक की तैयारी के लिए एक लंबा समय मिले। और यहां से अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हमें क्वालिफायर से नहीं गुजरना पड़ेगा, तो उससे बचना चाहेगी टीम। क्वालिफायर का रास्ता हमेशा कठिन होता है, एशियन गेम्स के जरिए लॉस एंजलिस का टिकट कटाना ये सबसे बड़ी अभी लक्ष्य जो है वो भारतीय टीम का यही होना चाहिए, पुरुष हॉकी टीम।
0: सायंतन, पुरुष हॉकी की थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विदेशी कोच हैं, मेंटल ट्रेनर भी हैं, फिजियो भी हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में थोड़ा फिटनेस का इशू नजर आया, क्या एशियन गेम्स से पहले उस पर तैयारी की गई है, उसको दुरुस्त किया गया है?
1: देखिए, अब हमें लॉस एंजलिस ओलंपिक्स का जो टारगेट है उसको मद्देनजर पर रखते हुए हमें आगे बढ़ते जाना एशियन गेम्स पे। विमेंस टीम अगर इतना अच्छा कर सकते हैं वहाँ पे, फिफ्थ आ सकती है, तो मेंस टीम भी कहाँ पीछे, क्योंकि एशियन गेम्स में एक ट्रेंड चला है जहाँ पे मेंस हॉकी टीम से काफी एक्सपेक्टेशंस है और गोल्ड के नीचे एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं है। तो उसी को साई इस बार मद्देनजर पे रखती हुए काफी सारे जापान में, जैसे माउंट फूजी में, जी

0: थिम्फू में, तोयामा, ये सब जगहों में उन्होंने एक्सपोजर कैंप्स भी रखे ACTC के थ्रू, टॉप्स के थ्रू। काफी एक्सपोजर कैंप्स बहुत मेंस टीम और वुमेन्स टीम को मिले हैं। जैसे क्रेग फुल्टन की जो साइड है उनको भी काफी हेल्प मिलेगा, और शॉर्ट मरीन की जो वुमेन्स टीम है उनको भी काफी हेल्प मिले। शॉर्ट मरीन का पता है आपको, वुमेन्स टीम को आके एकदम पूरा चार चांद लगा दिया, क्योंकि उन्होंने 2022 जब हॉकी में हम लोग
1: फोर्थ प्लेस
0: फिनिश जब हम लोग का हॉकी वुमेन्स में लाए थे, तो शॉर्ट मरीन भी थे, वो वापस आ गए, और वुमेन्स का कितना डेवलपमेंट हुआ आपको पता भी है वर्ल्ड कप में जो आया है। मेंस का हम यही उम्मीद करेंगे कि वो लोग बरकरार रखे यही परफॉर्मेंस जो हमने एक्सपोजर दिया है, जो हमने कैंप्स दिया है जापान में एक्लिमेटाइज और भी करने में वो मदद करे, एंड डेफिनेटली लॉस एंजलिस का जो टारगेट है वो हम फुलफिल कर सकते हैं।
2: महिला हॉकी की चर्चा करें, पिछली बार हम सेमीफाइनल में 0-4 से हार गए थे चीन से। इस बार जिस तरीके का विश्व कप में प्रदर्शन रहा, जैसा कि सायंतन बता रहे थे और हमारे खेल प्रेमी जानते भी है कि हम पांचवें स्थान पर रहे, कितनी उम्मीदें हैं और टक्कर किस देश से आप देख रही हैं?
1: देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वर्ल्ड कप जाने से पहले जो बैकग्राउंड रहा है उसको देखते हुए हर कोई बात कर रहा था कि पुरुष हॉकी टीम क्या करेगी, क्या मेडल मिलेगा, क्या 50 साल का सूखा खत्म होगा। लेकिन जिस तरह से लड़कियों ने प्रदर्शन किया है, और आपको ये बात यहाँ ध्यान में रखनी होगी कि इस टीम में 11 खिलाड़ी ऐसी थी जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही थी, और 21-22 साल की 11 लड़कियां, तो महिला हॉकी टीम के पास ऊर्जा है, फिटनेस है, और शॉर्ट मरीन जैसा एक कोच है। जब वो पिछली बार आए थे तब भी डोलड्रम में थी विमेन हॉकी, और उस हॉकी टीम को वो टोक्यो में चौथे स्थान तक लेकर गए। अभी भी आप देखिए, नेशंस कप जीता, क्वालिफायर जीता वर्ल्ड कप के लिए, और उसके बाद अब प्रबल दावेदार मानी जा रही है। और एशियाई स्तर पर चाइना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसके पास अन्नान एलिसन जैसी एक बेहतरीन कोच है। लेकिन हम विश्व कप के प्रदर्शन को अगर देखें तो उसी चाइना से हमारा सबसे पहला मुकाबला था और हमने उसको ड्रॉ पर रोका। तो एक बहुत बड़ा एक मेंटल एडवांटेज है भारतीय टीम के पास कि जो एक हवा होता था चाइनीज टीम का वो अब नहीं है, और ये टीम अपना दिन होने पर चाइना को हरा सकती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और गोलकीपरों का प्रदर्शन हमने देखा, सविता लेजेंडरी प्लेयर है, और 320 मैच हो जाएंगे जैसे ही वो पहले मैच के लिए उतरेंगी, तो सविता का अनुभव है। उसके अलावा बिच्छू देवी ने जो प्रदर्शन किया है विश्व कप में, खासतौर पर इंग्लैंड के खिलाफ जो लास्ट 30 सेकंड में उनका सेव था, तो बिच्छू देवी पर भी यहाँ नजरें होंगी। चुनौती बहुत कड़ी नहीं है, और भारतीय टीम के पास एक पूरा कोचिंग स्टाफ है हर फील्ड के लिए, हर चीज के लिए। आप चाहे शॉर्ट मरीन के साथ आप देखिए, वेन लोम्बार्ड है, जब वो यहाँ आए थे जनवरी में उनके पास 25 खिलाड़ियों की इंजरी लिस्ट थी, लेकिन आज आप टीम का फिटनेस लेवल देखिए। ताइके तकामा दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रैग फ्लिकर में से एक थे, वो भारतीय ड्रैग फ्लिकर दीपिका खासतौर पर उनको ट्रेन कर रहे हैं। उसके अलावा पिरमिन ब्लाक एक लेजेंडरी गोलकीपर रह चुके हैं डच, उन्होंने बिच्छू और सविता के साथ सेशन किए हैं। और मथियास विला अर्जेंटीना के जो एडवाइजर है, असिस्टेंट कोच भी है। उसके अलावा रोडेट और कियारा जो साइंटिफिक ट्रेनर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस टीम के लिए। तो मुझे लगता है कि इस बार 1982 में हमने गोल्ड जीता था महिला हॉकी में, और मुझे लगता है इस बार पूरी प्रबल संभावना है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से माहौल है, अपबीट है टीम, ये टीम जरूर इस बार गोल्ड मेडल लेके आएगी।
2: चलिए हॉकी के बाद चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट पर। बैडमिंटन कोर्ट पर भारत का पिछला प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा था। 2023 में यानी पिछले एशियन गेम्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुषों के डबल्स में भारत को एशियन गेम्स के इतिहास का पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। इसके अलावा पुरुष टीम ने रजत पदक और HS प्रणॉय ने पुरुष सिंगल्स में कांस्य पदक जीता था। और इस बार अगर हम आपको बताएं कि कौन से खिलाड़ी जा रहे हैं, तो मेन सिंगल्स में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी होंगे पुरुष वर्ग में, साथ ही साथ महिला सिंगल्स में अनुभवी PV सिंधु और उन्नति हुड्डा अपनी चुनौती पेश करेंगी। मेन्स डबल्स में एक बार फिर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पर नजर होगी। हरी हरन और MR अर्जुन की जोड़ी भी चुनौती पेश करती नजर आएगी। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद के साथ साथ कवि प्रिया सेल्वम और सिमरन सिंह भी होंगी। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा कास्त्रो की जोड़ी अपनी चुनौती पेश करती नजर आएंगी। मोना, एक तरफ तो अनुभव है PV सिंधु का, लक्ष्य सेन भी है अगर पहले हम सिंगल्स की बात करें, लेकिन जो बड़ा इन्वर्टेड कॉमा है, दोनों फॉर्म में नहीं है।
1: जी बिल्कुल, लेकिन ओलंपिक पदक विजेता है दो बार की PV सिंधु, और लक्ष्य सेन हम सभी जानते हैं कि वो मामूली अंतर से ओलंपिक पदक से चुके हैं, तो काबिलियत पे कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि फॉर्म जो होता है वो टेम्परेरी होता है, लेकिन क्लास जो होता है वो परमानेंट होता है, और PV सिंधु और लक्ष्य सेन के पास वो क्लास है।

0: अगर वो अपनी क्षमता पर खेले तो बिल्कुल स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदारों में होंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी दावेदार है वो निश्चित तौर पर, जैसा आपने कहा, चिराग और सात्विक, पिछली बार भी गोल्ड जीता है और निरंतरता है उनके प्रदर्शन में कि कम से कम वर्ल्ड लेवल पे भी वो सेमीफाइनल तक जरूर जाते आए हैं, तो उनसे एक बार फिर यहाँ उन पर काफी दारोमदार होगा। और लड़कियों में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद, जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने इतिहास रचा है, और एक कोर ग्रुप आप देखिए लगभग वही है जो हर बड़े टूर्नामेंट में आप देखते हैं भारतीय बैडमिंटन का, तो यहाँ पर त्रिशा और जॉली से भी ये उम्मीद होगी कि वो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है उसको, तो वो जो लय है उसको बरकरार रखे, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज है उसको थोड़ा बेहतर करते हुए एक अच्छा भारत के लिए मेडल हॉल लेकर आए।
1: साइंथन, बैडमिंटन एक ऐसा खेल जिस पर खेल मंत्रालय और साई की पैनी नजर रहती है और बहुत सारे उसमें इनोवेशन भी करते रहते हैं। जूनियर लेवल पर आप विदेशों में खिलाड़ियों को भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, विदेशी कोचेस को बुलाते हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट है जरूर, लेकिन बहुत सारी चीजें चल रही हैं इसमें। किन खिलाड़ियों से आपको उम्मीद है?
2: जैसे अभी बताया गया कि त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप दिल्ली में उन्होंने ऐसा करके दिखाया जो कुछ लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, काफी स्पोर्ट्स फैंस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं बोलना चाहूंगा हंजाओ में वो लोग राउंड ऑफ 16 में आए थे, लेकिन अगर ये BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो फॉर्म दिखाए वो लोग, जो डबल्स वुमेन्स पेयर, तो यू नेवर नो कि वो लोग कौन से स्टेज तक जा सकते हैं। और ये एशियन लेवल है तो और एशियन लेवल में कंपटीशन आएगा, चाइना से आएगा, कोरिया से आएगा, जापान, थाईलैंड ऑफ कोर्स, लेकिन अगर वो लोग उस कॉन्फिडेंस, उस मोरल को लेके आगे जाते हैं तो डेफिनेटली दे कैन डू समथिंग। उसके बाद में आऊंगा आयुष शेट्टी में। आयुष शेट्टी ने एशियन चैंपियनशिप्स में हिस्ट्री 2026 में इसी साल में किया था कि 1965 के बाद पहला खिलाड़ी जो एशियन चैंपियनशिप्स के फाइनल में और सिल्वर मेडल भी लाए, तो आयुष शेट्टी से भी यही उम्मीद है एंड डेफिनेटली होपिंग कि अच्छा कुछ बैडमिंटन में हो सकता है। एंड डेफिनेटली सात्विक चिराग एक डार्क हॉर्स है जो कंपटीशन में बाहर आते हैं, तो वो वाला चीज भी हमें देखने को मिल सकता है। तो देयर इज ऑप्टिमिज्म इन बैडमिंटन जो ऑफ कोर्स हम लोग सब विश करेंगे कि होपफुली आईजी ने कोया में वो बाहर आए।
1: जी हाँ, बैडमिंटन कोर्ट पर भारतीय एथलीट अपनी चमक बिखेरे हम सबकी उम्मीद है। लेकिन अब रुख करते हैं माटी के खेल कबड्डी की ओर। कबड्डी में भारत का दबदबा हमेशा से रहा है। पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष टीम ने ईरान को एक रोमांचक फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक वापस हासिल किया था। वहीं भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ताइपे को हराकर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। मोना, हम सब जानते हैं कि कबड्डी में टीम अच्छी है और जब से कबड्डी लीग की शुरुआत हुई है फिटनेस लेवल भी आला दर्जे का हो गया है, लेकिन ईरान, दक्षिण कोरिया, चीनी ताइपे जैसी टीमें हमसे टकराएंगी, कितनी संभावना है इस बार?
0: देखिए, ईरान की ही चुनौती सबसे कठिन लग रही है भारत के लिए, लेकिन आप ये भी देखिए कि जो पास्ट रिकॉर्ड है 1990 के बाद लगातार 9 स्वर्ण, तो पहले ये होता था कि एशियन गेम्स में जब टीम कंटिंजेंट रवाना होता था तो ये मान लिया जाता था कि एक गोल्ड तो झोली में है ही कबड्डी का। लेकिन ईरान ऑफलेट भारत के लिए एक कड़ी चुनौती साबित हुआ है। लेकिन जैसे आपने कहा, प्रो कबड्डी लीग आने के बाद से जो स्टैंडर्ड है खिलाड़ियों का हमारे, वो बहुत बहुत आगे जा चुका है। पवन सहरावत आज जाना माना नाम हो चुके हैं और काफी अच्छे खिलाड़ी भारतीय टीम के पास हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ये स्मूथ ही रहने वाला है जर्नी। और महिला टीम की भी अगर हम बात करें तो ईरान ने हराया था भारत को हाल ही में, तो एक ईरान ही है वहां पर भी जो बहुत संभल कर उससे खेलना होगा, और अगर अपनी क्षमता के अनुरूप खेल पाए तो मुझे लगता है एक बार फिर हम दोहरा स्वर्ण यहाँ लेकर आ सकते हैं कबड्डी से।
1: जी हाँ, साइंथन, पवन सहरावत की चर्चा हो रही है, अर्जुन देशवाल हैं, असलम इनामदार हैं, आशु मलिक, देवांग दलाल, आयान लोचब, सुनील कुमार, कुछ चहेते नाम भारतीय कबड्डी फैंस के लिए, लेकिन टक्कर काफी मुश्किल होने वाली। महिला टीम से कितनी उम्मीदें हैं आपको?
2: देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब एशियन गेम्स में हमारे टीम स्पोर्ट्स की बात किया जाता है तो हमेशा 6 मेडल्स तो हमारे लिए पक्का होता है, 2 मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी टीम का, 2 मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट टीम का और 2 हॉकी टीम्स के। पवन शेरावत की बात जो आपने किया, पवन शेरावत, मैं पहले PKL की बात करूंगा आपसे। 12 खिलाड़ी जो है PKL से, वो कैप्टन भी है, वाइस कैप्टन भी है विभिन्न टीम्स का PKL में, वो लोग एशियन गेम्स में भी अपना प्रदर्शन करने वाले। जैसे पवन शेरावत का नाम लिया आपने, तमिल थलाईवास के कैप्टन रह चुके हैं, पिछले बार के हंजू का गोल्ड मेडलिस्ट भी है। सुनील कुमार जो नेतृत्व करने जा रहे हैं वो यू मुंबा के कैप्टन भी है, तो काफी ऐसा प्रो कबड्डी लीग का एक्सपीरियंस भी हमको दिखने को मिलेगा। साई गांधीनगर में भी उनका ट्रेनिंग का एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर साई गांधीनगर में तैयार किया था। उसके पहले IIS बिलारी जो कर्नाटका में है, वहां पे भी एक टीम का बढ़िया से ट्रेनिंग कैंप किया गया था कबड्डी के लिए स्पेशली। तो मेरे ख्याल से अभी जो हाल ही में बात हुआ था मेरा कबड्डी टीम से, पुष्पा राणा जो है कैप्टन जो है विमेंस टीम का, वो भी काफी कॉन्फिडेंट है, और साथ ही साथ सुनील कुमार भी काफी कॉन्फिडेंट है जो मेंस टीम का कप्तान है। एंड ये भी बताना चाहूंगा कि अभी जो एज ग्रुप है मेंस टीम का स्पेशली 20 से 29 का एज रेंज में है, जिस एज में हम लोग कबड्डी में अपना पीक परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। कंपटीशन है तो ईरान से है हमारा, अगर कोरिया से भी आ सकता है, चाइना से भी आ सकता है, लेकिन एडवांटेज है हमारे पास, वी आर देयर टू विन द गोल्ड मेडल। बट थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाता है तो वो गेम टू गेम हो सकता है, बट आई थिंक मेडल हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कंफर्म्ड है जो स्वर्ण होने जा रहा है।
1: आइए बात करते हैं वेटलिफ्टिंग की, जहां ताकत, तकनीक और एकाग्रता की परीक्षा होती है। पिछले एशियन गेम्स में चोट और कड़े मुकाबले के कारण भारत का वेटलिफ्टिंग अभियान थोड़ा निराशाजनक जरूर रहा था। मीराबाई चानू भी चोट के कारण पदक से चूक गई थीं। मोना, यहां पर कोई पुरुष वेटलिफ्टर प्रतियोगिता में जा नहीं रहा है, और एक बार फिर जो महिला टीम है उसमें मीराबाई चानू से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीत कर आई हैं, 49 किलोग्राम वजन वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगी, क्या लगता है?
0: जी बिल्कुल, ऋषि कांता सिंह को जाना था लेकिन घुटने की चोट की वजह से वो टीम से बाहर हो गए, तो चार महिलाएं वुमेन पावर जो है वो वेटलिफ्टिंग में देखने को मिलेगा। और मीराबाई चानू अभी ग्लासगो में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक उन्होंने जीता, और एक उनकी जो कैबिनेट है उसमें एक यही मेडल है जो नहीं है, पिछली बार बहुत कोशिश की लेकिन चोटिल थी और चौथे स्थान पर रही, तो इस बार पूरी उम्मीद है कि मीराबाई चानू जो है वो इस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगी। उनके अलावा ज्ञानेश्वरी यादव है 53 किलो में, निरुपमा देवी है 61 किलो में, और हरजिंदर कौर है 69 किलो में। तो इन चारों महिलाओं से उम्मीद होगी कि भारत ने वेटलिफ्टिंग में काफी सारे 14 पदक जीते हैं लेकिन स्वर्ण पदक एक भी नहीं है एशियन गेम्स का, तो वो कमी को पूरा करने के लिए मीराबाई चानू पर काफी दारोमदार होगा।
1: और अब बात टेबल टेनिस की, जहां भारत ने हाल के वर्षों में अद्भुत प्रगति की है। पिछले एशियन गेम्स में सुतीर्थ मुखर्जी और अहिका मुखर्जी की जोड़ी ने दुनिया की नंबर एक चीनी जोड़ी को हराकर विमेंस डबल्स में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था। इस बार फिर जी साथियन पर नजर होगी, मानव ठक्कर होंगे, श्रीजा अकुला और सुतीर्था मुखर्जी पर भी नजरें होंगी। क्या लगता है कि किन खिलाड़ियों से ज्यादा उम्मीदें हैं? सुतीर्था पिछले कुछ समय से लगातार भारत के लिए बेहतर प्रदर्शन करती नजर आई हैं, दिया चिताले ने भी प्रॉमिस दिखाया है।
2: देखिए, अगर एशियन गेम्स की बात किया जाए तो हमारा जो डबल्स पेयर है, काफी हम लोग ने साइज से इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग दिया है उनको, गुजरात में भी है, बेंगलोर में भी है, हैदराबाद में भी, कोलकाता में काफी इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग हुआ था, कैंप नहीं हुआ था एक कंबाइंड, लेकिन इंडिविजुअल ट्रेनिंग से यही बाहर आया कि मानव ठक्कर और मनु शाह जो है, जो मेन्स डबल्स पेयर में खेलने जा रहे हैं, वर्ल्ड रैंकिंग 2 पे आए थे ITTF डबल्स स्टैंडिंग्स में, तो ये काफी एक हिस्टोरिक है। और इसके साथ भी मनु शाह, दिया चताले जैसे आपने बात किया, उनके साथ भी मिक्स डबल्स खेलने जा रहे हैं, तो शरद कमल जो हमारे असिस्टेंट शेफ डे मिशन भी है एशियन गेम्स के, वो भी इनको डायरेक्टली ट्रेन किया है, सबसे फेमस टेबल टेनिस प्लेयर इन इंडिया। तो मेरे ख्याल से मनु शाह, मानव ठक्कर, दिया चताले, इन तीनों में से काफी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। और साथ ही साथ श्रीजा अकुला भी है हाईएस्ट रैंक्ड वुमेन्स प्लेयर राइट नाउ आफ्टर मनिका बत्रा एंड सुतीर्था जैसे आपने जिक्र किया, तो इनसे आई थिंक मेंस टीम, वुमेन्स टीम काफी सारे कॉम्पिटिशन्स में, काफी सारे कैटेगरीज में हम लोग अच्छा उम्मीद कर सकते हैं टेबल टेनिस के।
1: और अब बात उस खेल की जो भारत में ही नहीं दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय है, जी हाँ, क्रिकेट। 2023 एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता था, और इस बार भी उम्मीद यही है, टक्कर कहीं देखती है मोना?
0: बिल्कुल, जैसे सैंतन कह चुके हैं कि वो कुछ पदक है जो हमें लग रहा है कि हमारी झोली में है पहले से, तो क्रिकेट सबसे ऊपर उसमें नाम आता है। महिला टीम की बात करें तो अभी एशिया कप जीती है, जबरदस्त आत्मविश्वास है, और हमने देखा कि एशियाई स्तर पर कोई टक्कर नहीं है भारतीय महिला टीम के लिए। और पुरुष टीम में तो वैसे ही सितारे भरे हुए हैं, श्रेयस अय्यर हो, वैभव सूर्यवंशी हो, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई चुनौती दूर दूर तक भारत के लिए नजर आती है।
1: सायंतन कार्यक्रम के समापन में क्या उम्मीदें हैं साई को, क्या उम्मीदें हैं खेल मंत्रालय को, और क्या उम्मीदें हैं बतौर मीडिया सलाहकार साई से जुड़े आपको?
2: लास्ट टाइम जितना कंटिंजेंट थे उससे काफी कम कंटिंजेंट इस बार जा रहा है, 501 पार्टिसिपेंट जा रहा है, लेकिन 107 मेडल जो लास्ट टाइम आए थे उससे भी हम एटलीस्ट 25% इंक्रीज की उम्मीद कर सकते हैं। तो हमारा ग्राफ यही रहेगा कि हम लोग तो थोड़ा सा कम कंटिंजेंट भेज रहे हैं, लेकिन वो कंटिंजेंट और भी मेडल्स ला सकते हैं। ऐसे कुछ लोग मंत्रालय से डिसीजन लिया गया कि कुछ

0: लोग को जस्ट पार्टिसिपेशन एक्सपोजर के लिए हम लोग नहीं भेजेंगे, बट जो मेडल के दावेदार है उनको ही भेजेंगे, क्योंकि ये रूल पहले से किया गया कि एथलीट्स का ट्रेनिंग देखते ही हमने ये फैसला लिया कि एथलीट्स अभी वो लोग मेडल जीतने के लिए जाते हैं। एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ है और साई ने खेल मंत्रालय ने भी इसी चीज को मद्देनजर पे रखते हुए इस बार जो 501 एथलीट्स को भेज रहे हैं और भी 25% इंक्रीज एटलीस्ट हम उम्मीद कर सकते हैं एंड डेफिनेटली वो होके ही रहेंगे एशियन गेम्स 2026 में।
1: मैदान तैयार हैं, रोशनी जगमगा रही है और तिरंगा जीत की उम्मीद लेकर आसमान में लहरा रहा है। तो जब भी कोई भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतरे, तालियां जरूर बजाइए, हौसला बढ़ाइए और दिल से कहिए चीयर फॉर भारत। चीयर फॉर भारत के इस अंक से जुड़ने के लिए मोना पार्थसारथी, आपका, सायंतन मोइत्रो, आपका बहुत बहुत आभार।
2: शुक्रिया आनंद,
0: थैंक यू सो मच।
1: इस कार्यक्रम में प्रोडक्शन सहयोग दिया स्वाति कपूर ने, इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया शाहनवाज खान ने। आकाशवाणी पर कल इसी समय एशियन गेम्स पर एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी आनंद श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमेरिका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ और दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश $8 अरब से बढ़कर $13.5 अरब कर दिया गया है। इस चरण में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं।
1: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमिकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही।
2: अप्रोच इन सेमिकॉन 2.0,
3: सेमिकॉन के दूसरे चरण में मुख्य रूप से डिजाइन कंपनियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वे स्टार्टअप हों या बड़ी कंपनियां। बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में आना चाहेंगी क्योंकि अब इसका दायरा बहुत बड़ा है और अवसर भी अपार हैं। स्टार्टअप ऐसे नवोन्मेषी समाधान ला सकते हैं जिन्हें बाजार पसंद करेगा।
2: इनोवेटिव सॉल्यूशंस व्हिच विल बी लाइक बाय द मार्केट।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। सरकार ने कहा है कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

0: विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेन देन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए भी समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छरिंग तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रुपए जमा किए जाएंगे।
2: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
0: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए MyGov प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में NCC कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट्स से MyGov प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
2: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप बनाने का काम चल रहा है तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप MyGov पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के रहने वाले रोहन राज ने माई गॉव को एक अच्छी पहल बताया।
4: माई जीओवी के जरिए लोग सरकारी योजनाओं और सरकार के अलग अलग कामों की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही लोग अपनी राय और सुझाव भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लोग को सिर्फ जानकारी लेने का मौका नहीं मिलता।

0: सकता, बल्कि अपनी बात रखने का और देश के विकास में भागीदारी करने का भी मौका मिलता है।
1: इस माईगोव प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने तिब्बती शरणार्थियों को पिछले 6 दशकों से अधिक समय तक शरण देने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ये पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत जी रामजी योजना विकसित गांवों के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 16वां चरण शुरू किया। इस चरण में 9 कोयला उत्पादक राज्यों में स्थित 25 कोयला खंडों की नीलामी की जा रही है। इनमें 21 पूर्णतः और 4 आंशिक रूप से अन्वेषित खदानें शामिल हैं। 9 कोयला उत्पादक राज्यों में अब तक कुल 147 कोयला खदानों की नीलामी हो चुकी है। इस वर्ष अगस्त में भारत का वस्त्र निर्यात बढ़कर 29,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त में निर्यात में 16.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान वस्त्र निर्यात 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गया। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.3% की वृद्धि है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
3: सेंसेक्स 22 अंक की मामूली गिरावट से 74,315 के स्तर पर रहा, जबकि निफ्टी 53 अंक की मजबूती से 23,271 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली सुधार से 95.94 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
2: और अब बात खेलों की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला दिल्ली में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 18वें ओवर में 4 विकेट पर 201 रन बना लिए हैं। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंद पर 108 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। वे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 30 गेंद में शतक पूरा किया। भारत 2 मुकाबले जीतकर पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। मौसम विभाग ने कल बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ तूफान आने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर

0: विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमीकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमेरिका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi positions India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. 1,00,000 crore rupee investment commitment received under Semicon 2.0 program. India asserts it will take all necessary steps to ensure energy security as US passes bill imposing 100% tariffs on countries procuring Russian crude oil. External Affairs Minister Dr. Jaishankar says India firmly committed to Bhutan's progress. Month-long Seva Sankalp Abhiyan begins across the country, marking Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday and 25 years in public service. And in men's cricket, India and Afghanistan face off in the third and final match of the T20 series in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet the scent. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating the 5th edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi.
2: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है, और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
1: Prime Minister Modi highlighted that India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth.
2: जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की थी। इसके बाद के एडिशन में बात आगे बढ़ी, अगले एडिशन में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे। पिछले साल हमने पायलट लाइन्स और टेस्ट चीफ पर चर्चा शुरू की। कैसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकलने शुरू हुए इस पर बात की, और इस साल हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चीप देश और दुनिया के कस्टमर तक पहुंचना शुरू हुई है, और अब ये भी मोहाली और सूरत में 2 और प्लांट्स में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: Mr. Modi said the outlay for second phase of the India Semiconductor Mission 2.0 has been increased to $13.5 billion from $8 billion in the first phase. He said 12 semiconductor projects have so far been approved and more projects will be approved in the next phase. Later, addressing a press conference on the sidelines of the event this afternoon, Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw said, Investment Commitment Ministry of Finance said the allegation is patently false and misleading. It said that the introduction of MDR on select high-value transactions will enable more domestic companies to operate under UPI. The department said the action of introduction of MDR is a step in protecting India's sovereignty in electronic payment ecosystem. India today said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security. The External Affairs Ministry said

0: माई भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप माई गॉव पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, देश की युवा पीढ़ी पर पूरा भरोसा है।
1: टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज, अ रेजिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ रोहन राज टर्म द माईगॉव प्लेटफॉर्म एज अ वेरी इफेक्टिव मीडियम फॉर शेयरिंग फीडबैक एंड सजेशन इन फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट्स स्कीम्स एंड पॉलिसीज।
2: थ्रू माई जीओवी पीपल कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। दे कैन ऑल्सो शेयर देयर आइडियाज, ओपिनियंस एंड सजेशंस विद द गवर्नमेंट। इट ऑल्सो प्रोवाइड क्विज, कॉम्पिटिशन एंड ऑनलाइन एक्टिविटी वेयर स्पेशली यंग पीपल कैन पार्टिसिपेट। So my government gives people a simple way to connect, to inform, share their ideas and take part in the development of the country.
1: By July 2026, nearly 6.5 crore citizens had registered on the MyGov platform. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
3: Prime Minister Modi today said the BJP government in West Bengal aims to ensure that not a single eligible woman is deprived of the benefits of the Annapurna Yojana and is working relentlessly towards that goal. Mr. Modi stated this while virtually addressing a gathering in West Bengal during the release of the installment under the Annapurna Yojana, providing 3,000 rupees per month to around 1.5 crore women.
0: अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत इसी सोच के साथ हुई है। सरकार बनाने के कुछ ही दिनों के भीतर इस योजना पर काम शुरू हुआ और आज इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं तक सीधे
4: ऑन अनवाइंड दिस इवनिंग लेट मी नो 8657661071 नाइजल्स आस्क्ड फॉर कटिंग क्रू आई जस्ट डाइड इन योर आर्म्स टुनाइट।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इको

0: सिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमिकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही। श्री वैष्णव ने कहा कि एक कंपनी ने आज भारत में 5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है और अन्य कई कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। सरकार ने कहा कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्यों के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमरीका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूर्ण हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुंग छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री शेरिंग तोबके को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सेवा दिवस में देशभर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। दिल्ली और बिहार सहित देशभर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रूपये जमा किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। अभियान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और साझा जिम्मेदारी पर बल दिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के कक्षा 6 के छात्रों के लिए अनिवार्य 3 भाषा नीति को वर्ष 2027 के शैक्षणिक सत्र से लागू करने पर विचार करने का सुझाव दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्ले बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छात्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए इस स्थगन का सुझाव दिया। भारत ने तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। भारत ने अफगानिस्तान को 222 रन का लक्ष्य दिया था। अफगानिस्तान ने 14वें ओवर में और एक गेंद में 94 रन ही बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बस मन करता है कि वो सामने आ जाए, कुछ देर बैठे, बेशक से कुछ कहे या ना कहे, पर सामने बैठा रहे। क्योंकि कुछ मुलाकातों के लिए बातचीत नहीं, सिर्फ किसी अपने की मौजूदगी ही काफी होती है।

रंगे महफिल में आज आप हैं विनीता बेदी के साथ। और दोस्तों, तन्हाई हमेशा अकेले कमरे में ही नहीं होती, कभी कभी बहुत सारे लोगों के बीच भी मन किसी एक चेहरे को ढूंढता रहता है। अब वो जब चेहरा नहीं दिखता ना, तो दिल के भीतर कहीं एक खामोश सी नमी उभर आती है, वही नमी जो एहसास कराती है कि वो चेहरा कितना अपना है।

0: जिंद।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी रेनबो पर दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग महफिल, आज मेरे यानी विनीता बेदी के साथ। दोस्तों रात की खामोशी में एक छोटी सी आहट भी जैसे बहुत कुछ कह जाती है। कभी धीमे से हवा का चलना, कभी पत्तियों का सरसराना और कभी अचानक किसी पुराने नाम का याद आ जाना। दोस्तों बाजी मर्तबा तो लगता है ना कि शायद यादों की भी अपनी ही आहट होती है। सुनी कभी आपने?

रंग महफिल में आज आप हैं विनीता बेदी के साथ। और दोस्तों, मोहब्बत में हम अक्सर किसी इंसान को उसकी बातों से नहीं बल्कि उसकी आंखों से पढ़ते हैं। आंखों में छिपी खुशी, दर्द, उम्मीद और कभी कभी ये एहसास भी, जिसे शब्दों में तो बयान किया ही नहीं था, फिर वो कैसे जान गया हर वो भाव जो मेरे मन में था।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आप हैं प्रोग्राम रंगे महफिल में अपनी दोस्त विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, बिछड़ना कभी भी अचानक नहीं होता। रिश्ता पहले खामोश होता है, फिर दूरियां बढ़ती हैं, और फिर एक दिन एहसास होता है दिल को कि जिसे हम अपना समझते थे वो अब हमारी कहानी का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन ये दूरियां, इस दिल को समझाना इतना आसान कहाँ होता है।

दोस्तों, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता। घर तो वो जगह है जहाँ लौटकर मन को सुकून मिले, जहाँ कोई हमारी खामोशी को भी समझ सके, और कभी कभी किसी इंसान की मौजूदगी ही हमारा सबसे करीबी घर बन जाता है। आप बताएं, घर यानी दीवारें या घर मानी सुकून?

दोस्तों, कभी कभी दिल बस इतना चाहता है कि वक्त थोड़ी देर और ठहर जाए। वही शाम, वही साथ, वही बातचीत और वही महकते हुए पल, बस थोड़ी देर और। और हर चाहत का मुकम्मल होना भी जरूरी नहीं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, हमें कुछ खूबसूरत यादें देते हैं और फिर किसी मोड़ पर वो हमसे बिछड़ भी जाते हैं। उनका हमारी जिंदगी में शामिल ना होना एक सच्चाई है, लेकिन उनका एहसास, उनके होने का एहसास, वो भी तो कम खूबसूरत नहीं। इसी एहसास के साथ अब विनीता बेदी को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।

इस समय रात्रि के ठीक 12 बजे हैं और अब मुख्य समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमेरिका में पारित। भारत ने कहा, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। सेना के प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करेगा। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाया। मौसम विभाग

आज बिहार, राजस्थान, केरलम माहे उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। और भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए आखिरी T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रनों से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जीरो आवर शो। रात्रि के ठीक एक बजे हैं। अब प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमेरिका में पारित। भारत ने कहा, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। सेना के मुख्य सेवा प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करेगा। हिंदुस्तान एयरनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस पर सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाई। मौसम विभाग ने आज बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, उड़ीसा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। और भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए आखिरी T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रनों से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है। समाचार समाप्त हुए।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा है इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

बातों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहानी रात। रात्रि के 2 बजे हैं, अब मुख्य समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमेरिका में पारित। भारत ने कहा, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की शुरुआत के बाद दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। दुनिया भर में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के आज स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान शुरू किया। अभियान के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और दूतावास परिसरों में सफाई अभियान चलाए गए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाई। मौसम विभाग ने आज बिहार, राजस्थान, केरलम माहे, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। और भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए आखिरी T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रनों से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है। समाचार समाप्त हुए।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आधार कार्ड है इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: हुनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।

0: कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार

उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

लीजिए सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण के केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमीकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज से महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। वे 20 सितंबर तक महाराष्ट्र में रहेंगे। इसके दौरान वे मुंबई, लोनावला और पुणे में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधित करते हुए पासपोर्ट नियम 2026 को अधिसूचित किया है। संशोधित नियमों के तहत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक वैध रहेगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के दोनों पक्षों को पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाया। दोनों पक्षों को सुबह 11 बजे तक अपने लिए 3-3 नाम और मुक्त चुनाव चिन्हों के 3-3 विकल्प देने को कहा है। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। एशियाई खेल 2026 में भारत का अभियान कल शुरू होगा। मौजूदा महिला क्रिकेट चैंपियन भारत मेजबान जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतरेगा और भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए आखिरी T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रनों से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है।

0: Money.
1: श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 3:04 होने हो चुके हैं। आइए, ये वक्त है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज का, तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज।

0: गोवे की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: महामर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: आइए अब एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से मिलवाता हूँ, जिसे मैं पहली बार चंडीगढ़ में मिला था। और मुझे याद है कि तब वो एक छोटी सी लड़की थी, बड़ी खूबसूरत थी।
1: उस वक्त मैं चंडीगढ़ में एक स्कूल गर्ल थी, 8th क्लास में पढ़ती थी और लाइफ में पहली बार शूटिंग देख रही थी। मुझे क्या पता था कि एक दिन मुझे आपके साथ भी काम करने का मौका मिलेगा। और आप मानेंगे, वो आप जो शूटिंग कर रहे थे उस फिल्म का नाम याद है आपको? सोनी महिवाल। देखिए ना इत्तेफाक, 10 साल के बाद मैंने उसी फिल्म में काम किया। उस वक्त वो किसी वजह से फिल्म बंद पड़ गई और मैंने सोनी महिवाल में फाइनली काम किया। याद है आपको? आपको कहाँ याद होगा, आप तो इतने बड़े स्टार थे।
0: मुझे याद है कि मैंने अपने पास जाकर चुपके से तुम्हारे कान में कहा कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं।
1: क्या काका जी, आपको सचमुच याद है? आई डोंट बिलीव इट। जीतू जी, आप जानते हैं कि जब मैंने नया ज्वाइन किया फिल्मों में काम करना, तो मैं तो एक फिल्म ओल्ड थी और हम लोग तो आपके फैन थे, आपके काका जी के, और आप तो जानते भी नहीं थे ये नई लड़की पूनम ढिल्लन कौन आई है। तो आपने ये निशाना फिल्म में कैसे एग्री किया कि आप एकदम नई लड़की के साथ, और इतना डिफिकल्ट रोल था, आप मेरे साथ काम करेंगे?
2: पूनम ढिल्लन, आपको एक बात बता दूं, जब मैंने फिल्म नूरी देखी तो मैंने सोचा, वाह क्या खूबसूरत सिखनी आई है, मुझे कब मौका मिलेगा इसके साथ काम करने का, कब मौका मिलेगा इसके सामने दिल फेंकने का। और भगवान ने वो मौका दिया। जब ये फिल्म निशाना बन रही थी, मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे थे।
1: मतलब आपकी इंटेंशन क्या थी?
2: मेरी इंटेंशन बड़ी नेक थी। हाँ? मेरी इंटेंशन ये थी कि मैं जल्द से जल्द आपको अपनी भावों में पकड़ लूँ।
1: ओह माय गॉड।
2: और मुझे इतना बड़ा शौक मिला जब मैं शूटिंग में पहली बार आपको मिला, आपने मेरे बच्चों को अपनी भावों में पकड़ लिया।
1: मुझे आप ये पहले क्यों नहीं बताया? आपके जो छोटे छोटे बच्चे अभी तो थोड़े बड़े हो गए हैं, उस टाइम देख के तो मैं ऐसी फिदा हो गई थी तुषार पे और एकता पे। मुझे लगा था इनसे ज्यादा क्यूट बच्चे नहीं देखे मैंने, तो सारी पिक्चर के आउटडोर में तो मैं उनके साथ फ्लर्ट कर रही थी। आपने ये इतने 10 साल के बाद हिंट क्यों

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

लीजिए सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज से महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। वे 20 सितंबर तक महाराष्ट्र में रहेंगे। इसके दौरान वे मुंबई, लोनावला और पुणे में आयोजित

आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन करते हुए पासपोर्ट नियम 2026 को अधिसूचित किया है। संशोधित नियमों के तहत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक वैध रहेगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के दोनों पक्षों को पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाया। दोनों पक्षों को सुबह 11 बजे तक अपने लिए 3-3 नाम और मुक्त चुनाव चिन्हों के 3-3 विकल्प देने को कहा है। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। एशियाई खेल 2026 में भारत का अभियान आज शुरू होगा। मौजूदा महिला क्रिकेट चैंपियन भारत मेजबान जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतरेगा और भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए आखिरी T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रनों से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है।

0: आकाशवाणी।
1: साथ ही स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 4:02 हुए हैं और आइए ये वक्त है कार्यक्रम सारे गामा का। मैं हूं आपके साथ प्रीति।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट कर रहा हूँ। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक लड़की थी दीवानी सी।